0: तो चलो आज के कार्यक्रम में जानबो कि जैविक खेती का है, बायो फर्टिलाइजर कैसे काम करते और एकर फायदा का है। तो किसान संगी हुआ, जैविक खेती वो खेती पद्धति है जहाँ रासायनिक खातू और जहरीला दवाई के जगह प्राकृतिक संसाधन के उपयोग करे जाते। एमा गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरा खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, नीम के घोल और दूसर जैविक तरीका के इस्तेमाल किए जाते। जैविक खेती के मुख्य उद्देश्य है माटी के सेहत ला सुधारना, पर्यावरण के संरक्षण करना, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन करना और किसान के खेती ला लंबे समय तक टिकाऊ बनाना। अब बात करबो बायो फर्टिलाइजर के, तो बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक। एमा लाभकारी सूक्ष्म जीव रही थे जो उन्हा माटी में पहुँच के पौधा ला जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते। ए मन प्राकृतिक रूप ले काम करते और माटी के उर्वरता ला तको बढ़ाते। जैसे कि राइजोबियम दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिर करते, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर फसल ला नाइट्रोजन उपलब्ध कराते। पीएसबी जिला फास्फेट घुलनशील जीवाणु कथन माटी में मौजूद फास्फोरस ला पौधा बार उपयोगी बनाते। एकर उपयोग लिए रासायनिक खातु के जरूरत कम पड़ते। जैविक खातु और बायो फर्टिलाइजर के कई ठन फायदा हवा। पहली बात, माटी के बनावट और उपजाऊपन सुधरते। माटी में जैविक पदार्थ बढ़ते जेकर से पानी धरे के क्षमता बढ़ जाते और माटी नरम रहते। दूसर फायदा के बात करबो तो खेती के लागत धीरे धीरे कम हो सकते। किसान अपन खेत पर उपलब्ध गोबर, फसल अवशेष और जैविक संसाधन के उपयोग करके खातु बना सकते। और तीसर है, पर्यावरण सुरक्षित रहते। रासायनिक खातु और कीटनाशक के कम उपयोग ले पानी, माटी और हवा कम प्रदूषित होते। और चौथा बात करबो, जैविक खेती ले तैयार अनाज, साग भाजी और फल स्वास्थ्य पर ज्यादा सुरक्षित माने जाते। आज के समय में जैविक उपज के मांग लगातार बढ़त है संगी हुआ, जेन ले किसान मन ला बेहतर बाजार और अच्छा दाम मिले के संभावना रही थी। टिकाऊ कृषि के मतलब सिर्फ आज के उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी पर घलो माटी और पर्यावरण सुरक्षित रखना है। तो जैविक खेती ये दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर किसान एक बेर में पूरा रासायनिक खेती छोड़ना कठिन समझते तो धीरे धीरे जैविक तरीका अपनाना शुरू कर सकते हैं। खेत में गोबर खातू, वर्मी कंपोस्ट, हरा खाद, बायो फर्टिलाइजर एकर उपयोग बढ़ा सकते हैं। अब फसल चक्र अपना के दलहनी फसल और फसल अवशेष के सही उपयोग करना घलो बहुत जरूरी है। खेती और बायो फर्टिलाइजर टिकाऊ कृषि में योगदान। बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव है जो माटी के उर्वरता बढ़ा के पौधा ला आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते। संगवारी हुआ, एकर प्रमुख लाभ एक आओ आप मतलब बता दी, माटी के उर्वरता और संरचना में सुधार होते। दूसर होते, रासायनिक उर्वरता पर निर्भरता कम हो जाते। अब पर्यावरण और जल स्रोत के संरक्षण होते। किसान भाई बहनी मन अपन नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग और कृषि विशेषज्ञ मन से जैविक खेती, जैव उर्वरक ये सब के सही जानकारी लेव और सही तरीका ले ओकर उपयोग करके पूरा लाभ उठावे। याद रखो, स्वस्थ माटी ले स्वस्थ फसल और स्वस्थ फसल ले स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज बनते। जैविक खेती सिर्फ एक खेती पद्धति नहीं बल्कि प्रकृति संग मिल के खेती करे के एक जिम्मेदार सोच भी है। और आज के खेती के बात में अटके, कल फिर नवा विषय के संग उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात अभी हम प्रसारित कर रहे थे। आज जानकारी का विषय था जैविक खेती और बायो फर्टिलाइजर की भूमिका। कार्यक्रम में वाचन स्वर था चित्रलेखा तिवारी का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरित मानस कान। गायन स्वर उत्तरा केलकर और मिताली सिंह का। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

0: चित्रा सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। आज जानकारी का विषय है जैविक खेती और बायो फर्टिलाइजर की भूमिका। वाचन स्वर है चित्रलेखा तिवारी का।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आप मन सुना था खेती के बाद। जी हाँ, हम लाथन खेती किसानी से जुड़े नवा जानकारी, उपयोगी सलाह और सफल किसान मन के अनुभव। आज के हमारे विषय है जैविक खेती और बायो फर्टिलाइजर टिकाऊ कृषि में योगदान। आज के समय में खेती के बढ़त लागत, माटी के घटत उपजाऊपन और पर्यावरण के चिंता ला देखत जैविक खेती एक बढ़िया विकल्प बन के सामने आए।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: कार्यक्रम रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। मुख्य गायन स्वर उत्तरा केलकर और मिताली सिंह का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। 6:45 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए संसारिक जीवन पर स्वामी आत्मानंद के विचार कार्यक्रम चिंतन में।
1: यह प्रश्न बहुधा मनुष्य के मन में उठा करता है कि क्या सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को पाया जा सकता है। इसका उत्तर यदि थोड़े से शब्दों में देना हो तो कहा जा सकता है कि यदि सांसारिक जीवन धर्म का अविरोधी हो तो अवश्य वह व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है। वस्तुतः भगवान तो हमारे भीतर ही विद्यमान है और वे हमें सतत प्राप्त हैं, पर जिसके माध्यम से हमें इस सत्य की प्रतीति करनी है उस मन के मैला होने के कारण हमें वे अप्राप्त लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं दर्पण में अपने को देखता

0: हूं और दर्पण में तह की तह धूल जमी हुई है, तो मैं अपना प्रतिबिंब उसमें देख नहीं पाऊंगा। जैसे जैसे मैं दर्पण की धूल साफ करूंगा, वैसे वैसे मुझे उसमें अपना प्रतिबिंब अधिकाधिक साफ दिखाई पड़ेगा, और जब धूल पूरी तरह साफ हो जाएगी तब मैं जैसा हूं ठीक वैसा ही दर्पण में दिखाई दूंगा। इसी प्रकार भगवान को देखने की बात है, हम अपने मन के दर्पण में भगवान को देखते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं। मन दर्पण के मैला होने पर भगवान के हमारे अपने भीतर होते हुए भी वे नहीं दिखाई पड़ते। मन दर्पण के साफ होते ही वे जैसे हैं वैसे ही भीतर प्रत्यक्ष होते हैं। इसी को भगवत प्राप्ति कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मन दर्पण कैसे साफ हो? क्या उसे साफ करने के लिए हमें संसार को छोड़कर कहीं जंगल में जाना पड़ेगा? नहीं, वह तो नहीं करना होगा, पर हमें अपना सांसारिक जीवन इस प्रकार बिताना होगा जिससे मन दर्पण पर और मैल न जमे, बल्कि पहले की जमी मैल धीरे धीरे साफ हो। सांसारिक जीवन बिताने की मूलतः दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति तो वह है जहां मनुष्य के सामने जीवन का कोई उच्चतर लक्ष्य नहीं होता, वह पशु वृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाता और मात्र इंद्रिय भोगों का जीवन व्यतीत करता है। और दूसरी पद्धति वह है जहां मनुष्य भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और इसलिए संसार की अपनी समस्त क्रियाओं को तदनुरूप मोड़ देता है। पहली पद्धति से भगवान नहीं मिलते क्योंकि मनुष्य उन्हें नहीं चाहता, वह मात्र भोग सुख चाहता है। दूसरी पद्धति से अवश्य में भगवान की प्राप्ति होती है क्योंकि मनुष्य अपने सांसारिक कर्मों को इस प्रकार करता है जिससे मन दर्पण साफ होता जाता है। श्री रामकृष्ण से जब किसी ने पूछा कि क्या संसार में रहकर भगवान को पाया जा सकता है, तो उन्होंने उत्तर में कहा हां, पर साथ ही यह कहना वे नहीं भूले कि यह तभी संभव है जब तुम तो संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे। ठीक वैसे ही जैसे नाव तो पानी में रहती है पर पानी नाव में नहीं रहता। यदि पानी नाव में रहने लगे तब तो नाव ही डूब जाएगी। इसी प्रकार यदि संसार मनुष्य में रहने लगे तब तो सांसारिकता मनुष्य को डुबो देगी। प्रश्न उठता है कि हम तो संसार में रहें पर संसार हम में न रहे, या कैसे संभव हो सकता है? गीता उत्तर देते हुए कहती है कि उस उपाय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग वह रसायन है जो हमें कमल पत्रवत संसार जल से अलिप्त रखता है। वैसे तो हमारा हर सांसारिक कर्म हमारे मन दर्पण पर संस्कार की धूल जमा देता है, पर जब हम योग का भाव लेकर कर्म करते हैं तो कर्म फिर कर्मयोग बन जाता है और मन दर्पण की धूल को साफ करने का सक्षम साधन हो जाता है। कर्मयोग का मतलब है कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझकर अकर्म और विकर्म का त्याग करते हुए कर्म को ईश्वर समर्पित बुद्धि से करना। कर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म। मनुष्य जिस स्थान पर है वहां उसके लिए जो करना उचित है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म का तात्पर्य है आलस्य, प्रमाद, कर्म में उत्साह का अभाव। और विकर्म का अर्थ है विपरीत कर्म, शास्त्र निंदित, समाज निंदित, अशुभ कर्म। तो कर्म जो कहता है कि विकर्म और अकर्म से बचो तथा कर्म का संपादन करो, और वह भी भगवत समर्पित बुद्धि से, अर्थात कर्म करते हुए इस भावना को मन में मजबूत करो कि तुम अपना कर्म का कर्तापन और फल का भोक्तापन प्रभु को सौंपे दे रहे हो एवं तुम उनके हाथों यंत्र मात्र हो। इस भावना से युक्त होकर सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी श्रोता सुन रहे थे, इसमें आपने सुना सांसारिक जीवन पर स्वामी आत्मानंद के विचार। प्रातः के 6:50 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7:05 पर श्रोता सुनेंगे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह, और इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई सुनिएगा सुबह 10:00। कलाकार होंगे गोरेलाल बर्मन और साथी, और केदार यादव, सुनीता थवाइत और बसंत सोनी के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम नए तराने लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर, और कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा शाम 5:05 का।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण शाम 5 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7 बजे। कार्यक्रम ग्राम सभा का समय होगा शाम 7:20 का। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे श्रोताओं राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य इस विषय पर, और कार्यक्रम किसानवाड़ी लेकर आएंगे शाम 7:30 पर। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजनाओं पर। श्री विनोद साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर से ये बातचीत की जाएगी। रात 8 बजे सुनिएगा हंस राज हंस के गाए गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में, और इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से श्रोता जुड़ेंगे 9:15 पर, दिन के 11 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और रात 9:15 से रात 11 बजे तक। समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह उनके नियमित समय पर किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ, और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी ये सूचना। श्रोताओं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम महिला सभा में इसका प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है, और इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। फोन कर सकते हैं आप 0775226592 3100026 इन नंबरों पर। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM एंड 103.2 MHz पर। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः, क्रीडाक्षेत्रस्य विशिष्टव्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभयदेशयोः मध्ये सुदृढ जनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राज

0: राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण अभी आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

सुबह की इस नई बेला में आप सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत। कीजिए स्वीकार आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, उम्मीद है कि आपके शहर, कस्बे या गांव में सुबह की ठंडी हवा और मानसून की फुहारों ने दिन की शुरुआत को और भी सुहाना बना दिया होगा। बारिश के बाद धुली हुई प्रकृति, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट मन को एक अलग ही सुकून देती है। साथियों, खेतों में भी हलचल बढ़ गई है। किसान नई उम्मीदों के साथ अपने काम में फिर से जुट गए हैं और बच्चे भी इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मौसम का आनंद लेने के साथ ही श्रोताओं, थोड़ी सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए साफ पानी पीना, आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना, ताज़ा पौष्टिक भोजन खासकर घर में पका हुआ लेना और मौसमी सब्जियों फलों का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही श्रोताओं, मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे में गरज चमक के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। श्रोताओं, थोड़ी सी सतर्कता हमें और हमारे अपनों को सुरक्षित रख सकती है। और अब आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: साथियों, इस ताजगी भरी सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे विचार जो हमारे जीवन, समाज और भविष्य से जुड़े हैं। तो आइए, इस सकारात्मक सोच के साथ आज के कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या होती है, लेकिन ये ताकत तभी काम आती है जब लोग स्वस्थ हों, पढ़े लिखे हों और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। साथियों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि दुनिया की आबादी कितनी बढ़ रही है, बल्कि ये भी समझना है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। साथियों, हमारा देश युवाओं का देश है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर किसी युवा को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिले हमारे युवाओं को, तो वही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो पानी, बिजली, भोजन, घर, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोच समझकर भविष्य की योजनाएं बनाएं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। श्रोताओं, एक खुशहाल समाज की शुरुआत एक स्वस्थ और जागरूक परिवार से होती है। जब परिवार छोटा होता है तो बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और उनके बेहतर भविष्य पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटा और बेटी में अंतर यानी लैंगिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है। अब समय बदल रहा है, बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन और अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रही हैं। हर बच्चे को समान अवसर देना ही सच्ची प्रगति है। बता दें श्रोताओं, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की पहल पर हुई थी। कार्यक्रम में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। रुकते हैं इस छोटे से अंतराल के लिए।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

श्रोताओं, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक और बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। पहले जहां बड़े परिवार आम बात थे, वहीं अब कई दंपति एक ही बच्चे तक सीमित रहना पसंद कर रहे हैं। छोटा परिवार निश्चित रूप से बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए मददगार हो सकता है साथियों, लेकिन विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यदि लंबे समय तक जन्म दर बहुत कम हो जाए तो भविष्य में नई चुनौतियां भी सामने आ सकती है। आज दुनिया के कुछ देशों जैसे जापान में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

0: जबकि युवा आबादी कम होती जा रही है और इसका असर श्रमिकों की उपलब्धता, अर्थव्यवस्था और बुजुर्गों की देखभाल पर भी पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बड़ा या छोटा होना ही इसका समाधान है। असली बात है संतुलन। हर परिवार अपनी परिस्थितियां, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य मिले। आखिरकार किसी देश की असली ताकत केवल उसकी जनसंख्या नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम नागरिक होते हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपको सुनवाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट जो हमें मिलता है उमाशंकर पांडे से। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ट्रैफिक अपडेट और जानते हैं आपके शहर बिलासपुर में क्या रहेगा आज ट्रैफिक का हाल।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा शंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले की सभी उत्कृष्ट सड़कें, यातायात के प्रति यहां के सजग नागरिकों एवं यातायात पुलिस के प्रयास से शहर के साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़कों में हमें कैसे चलना है, कहाँ क्या करना है या कहाँ क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें सड़कों के किनारे लगे यातायात संकेत बोर्ड से मिलती है। जब भी सड़क में हो, ऐसे संकेत बोर्ड पर जरूर ध्यान देवें। ये संकेत बोर्ड सड़क निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यातायात संबंधी संकेत बोर्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहला आदेशात्मक संकेत बोर्ड, दूसरा चेतावनी सूचक संकेत बोर्ड और तीसरा सूचनात्मक संकेत बोर्ड। मित्रों, आदेशात्मक संकेत बोर्ड हमें सड़कों में क्या करना है संबंधी आदेश देता है। यह संकेत बोर्ड गोलाकार होता है। यदि इसमें 20 लिखा है अथवा 40 लिखा है तो वहां पर अपने वाहन की अधिकतम गति उतनी ही रखनी चाहिए, अन्यथा विभिन्न स्थानों में लगे स्पीड वायलेशन कैमरे के माध्यम से गति सीमा का उल्लंघन पकड़ा जाएगा और आप जुर्माना के भागीदार होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि इसमें हॉर्न का चित्र बना है और वह लाल पट्टी से कटा है तो वहां हॉर्न नहीं बजाना है। यदि हॉर्न नहीं कटा है तो हॉर्न अवश्य बजावें। ठीक इसी प्रकार दूसरा संकेत बोर्ड चेतावनी सूचक संकेत बोर्ड कहलाता है। यह हमें आगे सड़क की स्थिति की जानकारी देता है, जैसे आगे सड़क में संकीर्ण पुलिया है या आगे यू टर्न है अथवा एन आकार की घुमावदार खतरनाक मोड़ वाली सड़क है आदि आदि, ताकि वाहन चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित कर सके और संभावित खतरे से बचा जा सके। और तीसरे प्रकार का संकेत बोर्ड सूचनात्मक संकेत बोर्ड कहलाता है, जो कौन सा स्थान किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ये जानकारी देता है। मित्रों, निश्चित रूप से ये संकेत बोर्ड सुगम और सुरक्षित यातायात में सहायक हैं। सभी से अनुरोध है इसका पालन कर अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी श्रोता सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से और जाना आपके शहर बिलासपुर में आज क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल। श्रोताओं, यातायात नियमों का पालन रहें, स्वयं भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। साथियों, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं पढ़कर लगता है कि वे हमारे आसपास की ही कहानी कह रहे हैं। उनके पात्र, उनकी बातें और उनकी संवेदनाएं हमारे अपने जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे ही साहित्यकार थे भीष्म साहनी। 8 जुलाई साल 1915 को रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी ने हिंदी साहित्य को ऐसी रचनाएं दी जो आज भी उतनी ही

प्रासंगिक है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस का नाम तो लगभग हर साहित्य प्रेमी ने सुना ही होगा। ये केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि ये बताता है कि नफरत का सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान को उठाना पड़ता है। और ये रचना आज भी हमें शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देती है। श्रोताओं, भीष्म साहनी को उनकी तमस नामक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में इन्हें सम्मानित किया गया, और साथ ही शिरोमणि लेखक सम्मान, लोटस पुरस्कार, अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से साल 1970 में इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साल 1983, साल 1998 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य के साथ साथ भीष्म साहनी रंगमंच से भी जुड़े रहे। श्रोताओं, उनका मानना था कि कला और साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को बेहतर बनाना भी है। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक भीष्म साहनी का निधन आज ही के दिन हुआ, 11 जुलाई साल 2003 को। और आज ही के दिन साल 1923 दिन 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मी उमा देवी खत्री, जिन्हें पूरी दुनिया टुनटुन के नाम से जानती है, आज के दिन इनका जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा की पहली और सबसे लोकप्रिय महिला हास्य कलाकारों में गिनी जाती हैं अभिनेत्री टुनटुन। अपनी सहज हास्य शैली, मासूम अदाओं और जीवंत अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो आज भी बरकरार है। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि टुनटुन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक पार्श्व गायिका के रूप में की थी। महान संगीतकार नौशाद ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए फिल्म दर्द साल 1947 में यह फिल्म आई थी, और इस फिल्म में उन्हें गीत गाने का अवसर दिया गया। इस फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का इतना लोकप्रिय हुआ श्रोताओं कि उमा देवी रातों रात एक चर्चित गायिका बन गई। बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उनके गोलमोल व्यक्तित्व और स्वाभाविक हास्य प्रतिभा के कारण उन्हें टुनटुन नाम मिला, और यही नाम उनकी पहचान बन गई। साथ ही उस दौर में जब हास्य भूमिकाएं लगभग पूरी तरह पुरुष कलाकारों तक सीमित थी, अभिनेत्री टुनटुन ने अपनी अलग पहचान बनाई और महिला कॉमेडियन के रूप में एक नई राह खोली। उन्होंने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस पचपन, प्यासा, कोहिनूर, दिल्ली का ठग, उजाला, काश्मीर की कली, राम और श्याम सहित सैकड़ों फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाया। उनकी छोटी सी भूमिका भी फिल्म में एक अलग ही रंग, एक अलग ही जादू भर देती थी। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय आज भी मिसाल माना जाता है। साथियों, टुनटुन ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी रूप रंग की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और कला के बल पर हिंदी सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। 24 नवंबर साल 2003 को मुंबई में अभिनेत्री टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी हंसी, उनकी अदाकारी, उनका अनूठा अंदाज आज भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा इस बात की प्रेरणा रहेंगी कि सच्ची प्रतिभा समय की सीमाओं से परे होती है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं टुनटुन यानी उमा देवी की आवाज में दर्द फिल्म का ये प्रसिद्ध गीत।

और अब इन्हीं बातों गीतों के साथ दीजिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह से अनुमति आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू को।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी हम प्रसारित कर रहे थे FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि यादों के आकाश में और भी उजली हो जाती है। कुमार गौरव उन्हीं कलाकारों में से एक है। उनका नाम आते ही एक मासूम मुस्कान, भोला भाला चेहरा और 80 के दशक के सदाबहार गीत हमें बरबरस याद आ जाते हैं। 11 जुलाई 1956 को जन्मे कुमार गौरव, इनका वास्तविक नाम मनोज तुली है। हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार कहे जाने वाले महान अभिनेता राजेंद्र कुमार के पुत्र। फिल्मी माहौल में पले बढ़े कुमार गौरव ने वर्ष 1981 में राहुल रवेल की फिल्म लव स्टोरी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की और ये फिल्म केवल सुपरहिट नहीं हुई श्रोताओं, बल्कि उस दौर के युवाओं की धड़कन बन गई। विजयता पंडित के साथ उनकी जोड़ी ने रोमांस की एक नई मिसाल कायम की। इस फिल्म के गीत याद आ रही है, देखो मैंने देखा है ये एक सपना और कैसा

तेरा प्यार जैसे गीत आज भी उतनी ही ताजगी के साथ सुने जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और अमित कुमार की, आनंद बख्शी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और अमित कुमार की थी, आनंद बख्शी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, लव स्टोरी फिल्म की अप्रत्याशित सफलता ने कुमार गौरव को रातों रात देश का लोकप्रिय रोमांटिक सितारा बना दिया। उनकी सादगी, संकोच से भरी अदाकारी और सहज अभिनय ने उन्हें लाखों युवाओं का पसंदीदा अभिनेता बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्में आईं तेरी कसम, स्टार रोमांस और लवर्स जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। ये फिल्में सफलता का इतिहास तो ना दोहरा सकी, लेकिन उनके अभिनय की गरिमा और उनकी शालीन छवि हमेशा ही सराही गई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, तेरी कसम। इस फिल्म से अमित कुमार ने स्वर दिया, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कुमार गौरव की रोमांटिक छवि को लोकप्रिय बनाने में जितना योगदान उनके सहज अभिनय का था, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान पार्श्व गायक अमित कुमार की आवाज का भी रहा। विशेष रूप से फिल्म लव स्टोरी में अमित कुमार ने अपनी युवा मधुर और भावपूर्ण गायकी से कुमार गौरव के पर्दे पर निभाए गए किरदार को जीवंत बना दिया। ऐसा लगा मानो ये आवाज उन्हीं के व्यक्तित्व के लिए बनी हो। अमित कुमार की गायकी और कुमार गौरव की मासूम अदाकारी के मेल को अमर बना दिया लव स्टोरी फिल्म के गीतों ने, और ये कारण कि आज भी जब इन फिल्मों के गीत सुनाए देते हैं तो श्रोताओं की आंखों के सामने सबसे पहले कुमार गौरव की वही भोली भाली मुस्कुराती हुई छवि उभर आती है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में अभिनेता और पार्श्व गायक की कुछ जोड़ियां समय के साथ पहचान बन जाती हैं। कुमार गौरव और अमित कुमार की जोड़ी भी ऐसी ही यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है, जिसने 1980 के दशक में रोमांटिक संगीत को एक अलग ही पहचान दी। अमित कुमार ने कुमार गौरव की कई फिल्मों में आवाज दी, लेकिन सभी गीत केवल उन्होंने ही नहीं गाए, कुछ फिल्मों में अन्य पार्श्व गायकों की आवाजें भी हमें सुनाई देती हैं। फिर भी लव स्टोरी और शुरुआती दौर में अमित कुमार की आवाज ही कुमार गौरव की सबसे पहचान योग्य आवाज बन गई थी। साथियों, साल 1986 में श्रोताओं, महेश भट्ट निर्देशित फिल्म नाम ने उनके अभिनय को एक नया आयाम दिया। संजय दत्त के साथ निभाई गई उनकी ये भूमिका ने साबित कर दिया कि कुमार गौरव केवल रोमांटिक नायक ही नहीं, बल्कि गंभीर और संवेदनशील किरदारों को भी पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतार सकते हैं, और ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शुमार की जाती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं नाम फिल्म का ये गीत। आवाजें मनहर उदास और मोहम्मद अजीज की हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दशकों बाद के वर्षों में उन्होंने फूल गैंग और कांटे जैसी फिल्मों में भी काम किया। धीरे धीरे कुमार गौरव फिल्मी दुनिया से दूर होते गए, लेकिन दर्शकों के दिलों से कभी दूर नहीं हुए। कुमार गौरव का फिल्मी सफ़र हमें ये सिखाता है कि लोकप्रियता का पैमाना केवल फिल्मों की संख्या नहीं होती, बल्कि वे यादें होती हैं जो एक कलाकार अपने दर्शकों के दिलों में छोड़ जाता है। आज भी जब 80 के दशक में मधुर गीत गूंजते हैं तो उनके साथ कुमार गौरव की मासूम छवि भी अनायास ही आँखों के सामने उभर आती है। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। श्रोताओं, समय भी

बीत जाए लेकिन उसकी पहचान और उसकी मुस्कान लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहे। और अब आपको सुनवाते हैं रोमांस फिल्म से ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर अमित कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

रोमांस फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर और अमित कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम सदाबहार नगमे में हम आपको सुनवा रहे थे अभिनेता कुमार गौरव के फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। उम्मीद है आज की ये संगीत यात्रा आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नए विषय पर और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए, क्योंकि गीत केवल मनोरंजन नहीं करते, वे हमारी यादों, भावनाओं और रिश्तों को भी जीवंत बनाए रखते हैं।

0: कार्यक्रम सदाबहार नगमे अभी श्रोता सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में। कृपया महिला सभा कार्यक्रम हेतु ये सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आप इनसे फोन पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 0775226592 3100026। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हम

0: कप्तान लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल प्रसिद्ध इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर

0: पर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग का सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है और हमारे संपूर्ण शरीर को, इसकी आकृति को व्यवस्थित रखने में, हमारे चलने, फिरने, उठने, बैठने में हमारे शरीर की हड्डियों की यानी अस्थियों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कई बार हम अस्थि से संबंधित विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित कौन-कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का क्या समाधान है, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल साहब को। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और अस्थि रोग विभाग एम्स में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम आम तौर पर हड्डियों से संबंधित समस्याओं की बात करें तो आपके पास किस तरह के मरीज अभी ज्यादा आते हैं जिन्हें हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, अगर हम दुर्घटना को अलग कर दें तो?
1: हस्ती रोग विभाग में फ्रैक्चर्स को छोड़ने के बाद आमतौर पर मरीज वात रोगों के आते हैं, हड्डियों के कैंसर के मरीज आते हैं और स्पोर्ट्स इंजरी लिगामेंट की चोटों के मरीज जाते हैं।
0: अगर हम वात रोग की बात करें तो वात

0: रोग क्या है और ये किस उम्र में ज्यादा होता है?
1: कई तरह के वात रोग हैं। जब हमारे पास 15 साल, 20 साल, 25 साल का युवा आता है और जोड़ों में दर्द के लिए बोलता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द के लिए बोलता है, तो एक रेड फ्लैग साइन है, क्योंकि युवा को कमर दर्द या जोड़ों में दर्द क्यों होना चाहिए? एक बीमारी है वात की, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये युवाओं में ही होती है। ये सैक्रो लेग ज्वाइंट कमर के फ्यूजन से स्टार्ट होती है और उसके बाद रीढ़ की हड्डी में, फिर कूल्हों के जोड़ में, फिर धीरे धीरे हाथ में, सभी जगह फैलती है। मजे की बात यह है कि जब मरीज आता है और दर्द बोलता है, तो उसको तो कोई भी डॉक्टर, दवाई की दुकान वाले भी दर्द की गोली यानी एनएसीआईडी दे देता है। जैसे ही एनएसीआईडी खाता है, उसका दर्द चला जाता है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती है। अभी तब इधर बीमारी बढ़ रही है और तकलीफ नहीं है। मरीज फिर 6 महीने बाद आता है, उसको दूसरी दर्द की दवाई लिख देते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपचार तो दर्द के लिए एनएसीआईडी ही है। लेकिन यदि आपके मन में एक सस्पिशन है, तो आप एक्सरे कराएंगे, आपको ऐसे ज्वाइंट के ऊपर असर दिखेगा, आपको हड्डियों का फ्यूजन दिखेगा। आप यदि सीआरपी, ईएसआर, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएंगे, तो ये बढ़े हुए आएंगे। और कुछ मरीजों में आपको HLA-B27 ये जांच भी पॉजिटिव मिलेगी।
0: डॉक्टर अग्रवाल, अगर हम वात रोग के कारणों की बात करें, तो इसके कारण क्या होते हैं?
1: तो मैंने आपको यही बताया कि पहला कारण जो था युवाओं में, ये हो गया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बाद जो दूसरा कारण होता है, उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें प्राय मरीजों को प्रातः सुबह जब उठते हैं, तो जोड़ों में जकड़न आती है, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, उंगलियों में जकड़न, और ये जकड़न प्राय आधा घंटे से ऊपर ले लेती है। धीरे धीरे जब आप काम करते हैं, तो ये जकड़न उतरने लगती है। मुख्य रीज़न रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, महिलाओं को, 40 से 50 साल के बुजुर्गों को, और एक जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। आज के दिन में आप देखेंगे कि 80% लोग एसी में ही रह रहे हैं। हर कार्यस्थल पर एसी लगा हुआ है। जब आप 9 से 5 तक एसी में बैठे हुए हैं, तो घर पे भी आपने एसी लगवा लिया है, क्योंकि आप बार बार गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, और वात रोग प्राय इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम खान पान की बात करें, तो हमारे जीवन में नियमित रूप से हम जिन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, क्या उनका भी असर हमारे शरीर पर पड़ता है, या वात रोग उसके कारण भी होता है?
1: ये प्राय देखा गया है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, जो लोग बड़े तालाबों के बाजू में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है। इसको आप इम्यून सिस्टम बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन ऐसे मरीजों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा पाई गई है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमारे 8 जोड़ जो हाथ के अंदर हैं, हमारी कलाइयों के जोड़, हमारे कंधों के जोड़, कोहनियों के जोड़, घुटनों के जोड़, ऐसे करके आप देखेंगे तो सभी जोड़ों में एक के बाद एक दर्द होना चालू होता है। अच्छी बात यह है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को टेस्ट पॉजिटिव आता है आरए फैक्टर का, यदि नहीं आया है तो एंटी सीसीपी फैक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, और फिर दवाइयां हैं, पहले डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दिए जाते थे, वो बीमारी को नियंत्रित करके रखती थी। आजकल बायोलॉजिक्स भी आ गए हैं, जिसके इंजेक्शन देते हैं, कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई साल का इंजेक्शन, और जोड़ों का दर्द जाता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात जरूरी है कि आप अस्पताल में गए, आपने जांच कराई, आपके वात रोग का निदान हुआ, आपने ठंडे में रहना, आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब छोड़ दिया, पर 2-3 महीने बाद जब आपको अच्छा लगा, तो आपने दवाइयाँ भी छोड़ दी। जब आपने वात रोग की दवाइयाँ छोड़ दी, तो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं छोड़ते हैं, आप शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारियाँ नहीं छोड़ते हैं, पर आप वात रोग की बीमारी छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, अगली बार ये दवाइयाँ उतनी कारगर भी नहीं साबित होती हैं, और तब आपको महंगे इलाज बायोलॉजिक्स की तरफ बढ़ना ही पड़ता है। एक बार यदि वात रोग डायग्नोज हुआ है, तो आपको दवाइयाँ नियंत्रण में लाने के लिए और बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए लंबे समय

0: तक खाने होंगे।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये वात रोग की जो दवाइयां हैं ये जीवन भर खानी होती हैं या एक समय के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है?
0: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, इनमें नियंत्रण दवाओं पर है। आपने यदि दवाएं लंबे समय तक खाई हैं, सही मात्रा में खाई हैं, सही समय से खाई हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप पूरी तरह फिट हैं, लेकिन फिर उसके आगे भी देखिए ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, आपका घुटना घिस गया, आपने बीमारी से दवाइयाँ खा खा के नियंत्रण ले लिया, ये ऐसा नॉर्मल आ गया, CRP नॉर्मल आ गया, पर वो जो घुटना घिसा हुआ था वो घिसाव तो घिस ही गया ना, तो ऐसे मरीजों को फिर जोड़ प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा। यदि आपने बीमारी को नियंत्रण में नहीं किया तो बाकी जोड़ भी एक के बाद एक घिसते जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जोड़ प्रत्यारोपण कहाँ कहाँ का हो सकता है?
0: घुटने का रोपण आज के दिन में सफल माना जाता है और इसका 60 से 70 साल तक का प्रयोग हो चुका है और मान्यता भी मिली है। अब तो किसी मरीज से बोलना भी नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जोड़ बदलाना पड़ेगा, वो आके डिमांड कर जाते हैं कि मेरा कूल्हा खराब है या मेरा घुटना खराब है, आप जोड़ प्रत्यारोपण कर दीजिए।
1: आमतौर पर यह होता है कि जब किसी मरीज को तकलीफ बढ़ने पर जोड़ प्रत्यारोपण की नौबत आती है तो कई लोग इसे टालते जाते हैं। आप बताएंगे कि अगर इसे टाल दिया जाए या टालते रहें तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है?
0: देखिए, हम छत्तीसगढ़ में हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा महाराष्ट्र, इसमें एक सिकल सेल एनीमिया की बेल्ट फैली हुई है।
1: जी
0: मरीजों को 25 साल 26 साल में कूल्हे का जोड़ खराब होने लगता है और इतनी बहुतायत में कूल्हे का जोड़ खराब हो रहा है कि दर्द के कारण उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती है, जोड़ में चाल नहीं आती है। यद्यपि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 सिकल सेल एवियन, पोस्ट कोविड एवियन या कोई और एवियन के लिए हम लोग स्टेम सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट के इंजेक्शंस देते हैं, कूल्हा बचाते हैं, पर जब कूल्हा घिस ही गया है तो आपको उसको बदलना होगा। पहले ऐसे बोला जाता था कि कूल्हा हम बुजुर्गों का बदलेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल जोड़ भी घिसेगा और मरीज की जिंदगी 15 साल 20 साल 25 साल चलने के बाद यदि और बचती है तो दोबारा जोड़ बदलना पड़ेगा। पहले ये बोलते थे कि जोड़ हम यदि बुजुर्गों का नहीं बदलेंगे और जवानों का बदलेंगे तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जोड़ जल्दी घिस जाएगा, लेकिन अब जो इम्प्लांट मटेरियल्स आ रहे हैं, जो पॉलीज आ रहे हैं, वो इस ढंग से आ रहे हैं कि 25 साल 30 साल तो जोड़ वैसे भी चलता ही है। घुटने का जोड़ जो अस्थि संधि शोथ ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण घिसता है तो प्राय 50 साल 55 साल 60 साल में बदला जा रहा है और कभी कभी फ्रैक्चर के साथ जो जोड़ टेढ़ा हो गया है या वात के मरीजों के रोग, वात के मरीज की तो बॉडी वैसे ही कमजोर हो चुकी है तो 30 साल 35 साल में भी यदि जोड़ खराब है तो जोड़ बदलना उचित होगा क्योंकि अभी आप सक्षम हैं, अभी आपके वर्किंग डेज हैं, तो अभी यदि आपने अभी काम नहीं किया तो बुजुर्ग अवस्था में जाके आपका जोड़ बदल भी दिया तो आपने जीवन में क्या पाया क्या खोया।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ तक इन जोड़ों की बात है, चाहे वो घुटनों के जोड़ हों या कूल्हे के जोड़ हों, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि हमारे शरीर का लुब्रिकेंट जब कम हो जाता है तब इसमें घिसावट ज़्यादा होने लगती है। ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं?
0: प्राइमरी अस्थि संधि शोथ या ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी आदमी को अपने आप तो होता नहीं है, कहीं न कहीं से घुटने में एक चोट लगी है जिससे आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज हुई है और यह डैमेज पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। हाइलिन कार्टिलेज की जगह फाइब्रो कार्टिलेज जाती है और अब जो रगड़ होती है उससे जोड़ घिसना चालू होता है। तो यदि घुटने को हम मांसपेशियों के संतुलन से, नियमित व्यायाम से संतुलित रखेंगे, बॉडी वेट को हम कंट्रोल में रखेंगे तो जोड़ के ऊपर असहज चोट आएगी नहीं, फिर तो फ्रैक्चर ही होगा, तो वो हम सभी जानते हैं। अब जब ये चोट आ गई है, जोड़ घिसने लगा है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो बॉडी उसके लिए प्रयास कर रही है, पर ऑफ कोर्स लुब्रिकेंट भी कम होता है। अर्ली स्टेजेस में आप लुब्रिकेशन दे के घिसाव कम कर सकते हैं।
1: वो जो आप बता रहे हैं कि लुब्रिकेंट दिया जा सकता है, किस तरह से लुब्रिकेंट दे सकते हैं?
0: तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप डिसीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिक ड्रग्स हैं जैसे ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्राइटिन, डायसेरिन, इनको देते हैं, लंबे समय तक दवाई देते हैं तो जोड़ का फ्लूइड वापस आता है। आजकल इंजेक्शंस भी हैं हाइलोरेनिक एसिड के,

0: जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर जोड़ में लुब्रिकेशन करते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज को ठीक करते हैं, और प्रयास तो इस चीज़ के भी हैं जहाँ पे स्टेम सेल का इंजेक्शन घुटने के अंदर लगाया जा रहा है इस आशा में कि शायद घुटने ठीक हो जाएगा। पर अब देखिए दो चीज़ें, एक जोड़ जल्दी घिसा हुआ है, हम उसको इन चीज़ों से वापस ले आएँ, एक जोड़ टेढ़ा हो चुका है, मैकेनिकल डिरेंजमेंट है, उसको अब चाहे जो भी कर लें, स्टेम सेल या लुब्रिकेंट कैसे काम करेगा, वहाँ तो मैकेनिकल डिफेक्ट है। जब तक मैकेनिकल डिफेक्ट ठीक नहीं होगा, जो कि ऑपरेशन से ठीक होता है, या तो आप ऑस्टियोटोमी करके अलाइनमेंट पर लाएँ या घिसी जोड़ का जोड़ बदल दें, वही उपचार है।
1: डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल, जो हमें अस्थि रोग से संबंधित जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे। अब मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: बहुत पहले 1980 के दशक में पिक्चर आई थी अवतार,
1: जी
0: उसका एक गाना था, यारों चलो उठो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो, और
1: तो
0: ये एक बहुत अच्छा गीत मुझे पसंद है,
1: जी,
0: इसे बजवाइए।
1: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है इस विषय से जुड़ा हुआ, तो सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।

0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। और डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल आज के इस कार्यक्रम में हमें जानकारी दे रहे हैं अस्थि रोग के संबंध में। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले आपने जोड़ों के प्रत्यारोपण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी अपनी दिनचर्या में अगर हमारे उठने बैठने चलने फिरने की हम बात करें तो वो कौन कौन सी गलत विधियां हैं या गलत तरीके हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर की हड्डियों पर पड़ता है।
1: देखिए, बच्चा पैदा होता है और मैक्सिमम बोन मास जो आता है, पीक बोन मास, वो 25 साल की उम्र में आता है। तो हमारा एम होना चाहिए कि हर आदमी के अंदर हड्डियाँ पीक बोन मास लें। मैंने देखा है कि घरों के अंदर माएँ बच्चे को मोबाइल दे देती हैं जिससे कि वो रोए नहीं। बच्चा मोबाइल खेलना स्टार्ट करता है और इसी के साथ क्या देखने में आ रहा है कि जितने भी लोगों का हम डेक्सा स्कैन एम्स में करा रहे हैं, हड्डी की स्ट्रेंथ की जांच कर रहे हैं, तो मोबाइल संस्कृति के में आने के बाद फोर आर्म के अंदर बोन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम आ रही है। जिसकी अपर लिम और लोअर लिम की डेंसिटी नॉर्मल है, उसके भी फोर आर्म की डेंसिटी कम है। तो बच्चों को हमको खेलने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। बचपन से ही लेट के पढ़ना गलत होता है, ये गलत है। आप बैठ के पढ़िए, सही आसन लीजिए। हम स्वयं करके बच्चों को प्राणायाम, उत्तम शारीरिक मुद्राएं, बेसिक योगासन देंगे तो बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करेगा और आगे उसको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। अगला आता है कदम, खान पान। फास्ट फूड का प्रचलन चला हुआ है, खाने में स्वादिष्ट होता है और आदमी खाता भी ज़्यादा है। आप व्हाट्सएप देख रहे हो पर खाना चालू है, आप टीवी देख रहे हो खाना चालू है। हो क्या रहा है कि बच्चा जो एक्टिव होना चाहिए था, अब वो मोटा हो रहा है, स्थूल हो रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और ये चीज़ें आगे ज़िंदगी में जा रही हैं। कई लोग बैठते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आजकल नौकरियां कंप्यूटर्स की मिल रही हैं, सब लोग इंजीनियर्स जो बन रहे हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, एक टक कंप्यूटर पर बैठे हैं, गर्दन की हड्डियाँ अकड़ रही हैं, सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस हो रहा है। आधे लेटे होके देख रहे हैं तो कमर की हड्डी घिस रही है, लंबा डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है और मांसपेशियां तो कमज़ोर हो ही रही हैं। जो बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस की पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को बताई जाती थी, वो आज प्री मेनोपॉजल लेडीज़ में भी और सभी युवाओं को हो रही है। साथ ही साथ हड्डी की कमज़ोरी तो ठीक है, ऑस्टियोसारकोपीनिया अपने आप में एक बीमारी के रूप में उभरा है जिसमें बुजुर्गों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं। और हमको ध्यान देना है न्यूट्रिशन के ऊपर कि उनको प्रोटीन कम से कम दिन में 3 बार 30-30 ग्राम दें जिससे कि मांसपेशियाँ स्ट्रांग हों, और नियमित व्यायाम सिखाए जाएं, बैलेंस करके दिया जाए, क्योंकि यदि बुजुर्ग गिरेगा तो हड्डी तो टूटेगी, गिरने ही ना पाए तो बेहतर होगा और उसके प्रयास किए जाएं।
0: डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के बारे में बताया कि आमतौर पर बच्चे अब देखा जाता है कि मोबाइल को लेकर बैठे रहते हैं और उनका चलना फिरना मोमेंट बहुत कम होता है और मैदानी खेलों से भी वो दूर होते जा रहे हैं, तो मैदानी खेलों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप अभिभावकों को?
1: तो स्पोर्ट्स इस टाइप के हुए, एक हुए इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, एक हुए नॉन इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। एक बच्चा बहुत अच्छा है, तैरने जाता है, लेकिन अब सोचिए क्या हो रहा है, पानी के अंदर तो वजन वैसे ही कम हो जाता है
0: जी,
1: तो चालों आएंगी, जोड़ों में चाल आएंगी, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी पर बोन कमज़ोर होगी। और जो हमारे देशी खेल हैं, पिट्ठुल, भागना, रस्सी कूदना, जंप्स, हाई जंप्स, ये इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हैं। जब हड्डी पर लोड पड़ता है तो वुल्फ लॉ के अकॉर्डिंगली बोन जहाँ पर लोड पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग बनती है, और इसलिए हमें इम्पैक्ट स्पोर्ट्स तो प्रमोट करने चाहिए।
0: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
1: समय बांध दें, घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर जाएंगे तभी धूप से विटामिन डी का निर्माण होगा
0: जी।
1: विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा।

0: कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, हड्डियों को स्ट्रांग करेगा, बच्चे का दिमाग अच्छा करेगा।
1: अब हम बात करें उन घटनाओं की जिन घटनाओं के बारे में ये कह सकते हैं कि ये कभी भी हो सकती हैं, और वो है एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज की तारीख में फ्रैक्चर आमतौर पर आपके पास किस तरह के आते हैं, और हमारे अंचल में इसका उपचार अब कितना एडवांस उपलब्ध है?
0: देखिए, यंग लोगों में, एडल्ट्स के अंदर फ्रैक्चर का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो फ्रैक्चर होता था, एक एक्सीडेंट के साथ मरीज एक हड्डी तोड़ के आता था, अब कोई भी मरीज एक सिंगल हड्डी तोड़ के नहीं आता है। हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट्स, हाई स्पीड वहीकुलर एक्सीडेंट्स, इनके साथ मरीज की तीन चार हड्डियाँ टूट जाती हैं, और वो हड्डियाँ भी चकनाचूर हो रही हैं। क्यों चकनाचूर हो रही हैं? क्योंकि हमारी हड्डियाँ वैसे कमज़ोर हैं। तो इनके ऊपर आपको मरीज को स्वस्थ रखना है, फिर उसके ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। और ऑपरेशन में भी हमको इस चीज़ को देखना है कि बाद में रॉड टूट ना जाए, प्लेट उखड़ के हाथ में ना आ जाए। तो ये एक पैटर्न है। दूसरी जो इंजुरीज आ रही हैं वो बुज़ुर्गों की आ रही हैं। बुज़ुर्ग ने गमला ढकेला, फिसल गया, उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। बुज़ुर्ग घर में चल रहा था, कालीन बिछा था, कालीन में फंसा, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। कूल्हे की हड्डियाँ बुज़ुर्गों में बहुत सामान्यतः टूट रही हैं। यदि गोला टूटा है तो आप गोला बदल देते हैं, जोड़ प्रत्यारोपित कर देते हैं। यदि उसके नीचे टूटता है तो आप गोला नहीं बदल सकते। वैसे में एक PFN करके नई नेल आई है, सस्ती नेल है, लेकिन आपको ख्याल होगा कि दुर्योधन की मौत उस समय में भी जांघ की हड्डी तोड़ के हुई थी। पर अब हमारे पास ऐसी रॉड्स आ गई हैं जो ऑपरेशन करने से जहाँ की कोई भी हड्डी टूट दी है तो मौत तो बचा लेती है। तीसरे फ्रैक्चर्स आ रहे हैं बच्चों के। बच्चों को सबसे कॉमनली होता है कि बच्चे को हाथ में लिया और झूला जला दिया। अब एम्स में आ रहे हैं, बता रहे हैं कोहनी में दर्द है, हो रहा है कि रेडियल हेड जो है सबलक्सेट हो रहा है, इसको पुल्ड एल्बो बोल रहे हैं। बच्चों को कंधे पर से उठाएं पर कलाई पर पकड़ के झूला ना झुलाएं। फिर जो हड्डियाँ टूटती हैं बच्चों की, तो आजकल फैशन है ऑपरेशन करा लो, लेकिन बच्चों की हड्डियों में यदि आपने ऑपरेशन किया तो हड्डी देर से जुड़ती है, इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चों में एक कैपेसिटी होती है रीमॉडलिंग की। तो यदि आपने बच्चे की हड्डी का एक्सरे देखा जो ओवरलैप में है, तो आप घबराइए नहीं। नेचर इसको सेकेंड इंटेंशन से हील करके फिर बिल्कुल सामान्य जैसा ला देगा, जो कि एडल्ट में संभव नहीं है। पर बच्चों को जो ये शक्ति मिली हड्डी जोड़ने की, तो उसका फायदा लीजिए। प्लास्टर्स में आमतौर पर बच्चों के फ्रैक्चर्स जुड़ जाते हैं।
1: जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है, दुर्घटना की बात है, तो इसके लिए तो हर रोज़ एक ही संदेश जन जन तक पहुँचाया जाता है कि आप वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन सावधानी से चलाएं। लेकिन कई बार घर के भीतर दुर्घटनाएं घट जाती हैं, खासकर फिसलने की वजह से। पानी होता है घर के अंदर, लोगों के घरों में ज़्यादातर टाइल्स लगी हुई होती हैं, और टाइल्स के रंग ऐसे होते हैं कि पानी कई बार दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इसके बारे में?
0: तो टाइल्स पे पानी पे फिसलना एक आम समस्या है। बेहतर है कि इतने अच्छी टाइल्स ना लें कि उस पर पानी पड़े तो दिखाई ना दे। मैंने बताया कि जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग अंधेरों में नहीं चलते, घर की रोशनियाँ संभाल के रखें, आदमी रोशनी में चलेगा। कालीन घर में सुंदर दिखते हैं लेकिन पैर में फंस के बुज़ुर्ग यदि गिरता है तो हड्डी को तोड़ता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही होगा। और बाथरूम के अंदर कई बार बेडिंग मैट्स आते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि बेडिंग मैट पे आप नहा रहे हैं तो उसकी सफाई कराते चलें। ये एक फ्लोर क्लीनर्स रखिए ना, नहाने के बाद खुद चलाइए और देखिए कि आपके जाने के बाद जो दूसरा घर में आ रहा है वो फिसल के बाथरूम में ना गिर जाए,
1: बिल्कुल,
0: काई ना जमा होने पाए।
1: बाथरूम की टाइल्स में चिकनाई बिल्कुल जमा ना होने दें, और चिकनी टाइल्स तो बाथरूम में कभी लगाना भी नहीं चाहिए,
0: एग्जैक्टली।
1: है ना? डॉक्टर साहब, हमने हड्डी के कैंसर के बारे में सुना है, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: हड्डी में बेसिकली दो टाइप के कैंसर होंगे, बुजुर्ग अवस्था में मेटास्टेसिस या सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स कॉमन है, और शरीर में कहीं पे भी कैंसर होगा वो हड्डियों में भी आएगा और फ्रैक्चर करेगा। लेकिन बच्चों में ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा एक प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, ये जानलेवा कैंसर है। ये प्रायः 10 से 20 साल के

0: दशक में होता है, और ईविंग सार्कोमा जो है 10 साल से छोटे बच्चों के एज में होता है। तो होता क्या है कि बच्चा आता है, उसको पैरों में दर्द है, आपने दवाई लिखी और भेज दिया। अब वो आता है गठान लेके, और जब तक वो गठान दिखने लायक होती है तब तक तो शरीर में फैल चुकी रहती है। इसलिए अस्थि कैंसर के मरीजों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जैसे ही दर्द हो, यदि एक दिन दो दिन से ऊपर रहा तो एक्सरे जरूर करा लीजिए, यदि दर्द बना रहा तो MRI की सुविधा हो गई है उसको करा लीजिए। विदुषों के अंदर जहाँ हड्डी के कैंसर प्रारंभिक अवस्था में मिल जाते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े आते हैं कि फिर हमको उनको कैंसर की दवाइयों से देकर नियंत्रित करो, फिर उनको निकाल के जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल जोड़ लगाओ और फिर आगे चलने दो। और फिर आर्टिफिशियल जोड़ बच्चे को लगाया है, उसकी उम्र तो 80 साल जानी है, तो आपको देखना पड़ेगा, एडजुमेंट की थेरेपी देनी पड़ेगी। तो इतना क्यों करें, समय से एक बच्चे का हम एक्सरे करा पाएँ तो अपने आप में काफ़ी कुछ कैंसर जल्दी पकड़े जा सकेंगे।
1: क्या हमारे अंचल में हड्डी के कैंसर का उपचार संभव है?
0: हड्डियों के कैंसर सारे अस्थि रोगों में से 1% मरीजों को होता है। इसके इलाज के लिए हमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI, PET CT और फिर ऑपरेशन की सुविधा, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। हम लकी हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सुविधा प्राप्त है, बट आपकी ज़रूरत नहीं है, एम्स रायपुर में, मेडिकल कॉलेज में और अन्य जगह ये सुविधा समग्र रूप से है। और ये खर्चीली चीज़ है, लेकिन शासन की मदद से समय पर लोगों को उपलब्ध हो रही है।
1: तो डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल जी, आज आपने अस्थि रोग जो विविध प्रकार के होते हैं, इन रोगों का उपचार किस तरह से करवाया जा सकता है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर किस तरह से उपचार करवाया जा सकता है, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम सभी अपने शरीर को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप हड्डियों से संबंधित समस्याएं और उपचार विषय पर डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है बातों बातों में। इसमें सुनिए छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ शासन का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के उत्थान तथा उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हाल ही में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों का दौरा किया। उन्होंने दुर्गम इलाकों में स्थित गांवों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। मंत्री ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर अनेक दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रोताओं, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। मंत्री महोदया, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मंत्री महोदया जी, अभी हाल ही में आपने बस्तर संभाग के बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा आदि जिलों का दौरा किया था। इस दौरे के अनुभव आपके कैसे रहे? इस दौरे के दौरान आपने लोगों से मुलाकात भी की, तो उसके बाद आपने वहां पे अधिकारियों को क्या विशेष दिशा निर्देश दिए हैं?
2: देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बस्तर संभाग के कुछ जिलों में दौरा का कार्यक्रम बना रहा और खासकर वहां जाने का उद्देश्य ही था कि हमारी विभाग की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे और इसलिए भी कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में जहां

0: हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विभागीय बैठकें, लोगों से बातचीत करना, ऐसा मेरा कार्यक्रम बना रहा। जाने के बाद बहुत सारे चीजों से अवगत भी हम हुए। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पहली बार किसी मंत्री का जाना, या गए भी हैं तो बाई रोड नहीं गए हों, तो भय मुक्त बस्तर बना। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमारे विष्णुदेव साय जी के शासन में ही संभव हो पाया कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। तो अब सभी विभागों को मिलके अब वहाँ कैसे आम जनता तक, आम लोगों तक योजनाएं कैसे पहुंचाएं, इस दृष्टि से 3 जिले का भ्रमण किया और उसमें बहुत कुछ का अनुभव हमें हुआ। उस अनुभव के आधार पे हम काम करना शुरू करेंगे।
1: मैडम, जैसे भी आपने जब बस्तर का दौरा किया था 3 जिलों का वहाँ पर, तो आपने जैसा बताया कि कई ऐसे गांव में पहुंची जहाँ इसके पहले मंत्री स्तर का कोई पहुंचा ही नहीं था। सड़क से आपने उनकी यात्रा की, कई लोगों से वहाँ पे मुलाकात की। आप प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। जब नक्सली समस्या का उन्मूलन हुआ तो अनेक जो नक्सल महिलाएं हैं, जो नक्सली संगठन में थी, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। या इसके अलावा वहां पे ऐसी महिलाएं भी रहती हैं जो नक्सली हिंसा से पीड़ित रही हैं। दोनों तरह की हैं, एक तो जो नक्सल संगठन से जुड़ी हुई, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, अब उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो नक्सल हिंसा से पीड़ित रही हैं, तो आपका विभाग उनके पुनर्वास में बड़ी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है और जो महिलाएं मुख्य धारा से कटे हुए थे
1: जी
0: उनको लाके हम मुख्य धारा में जोड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं। वहाँ प्रवास के दौरान हमने काफी सारी महिलाओं से बातचीत किया और हम डायरेक्ट उनसे संवाद कर रहे थे। काफी सारी चीज चर्चाएं हुई तो मुझे एक बात समझ में आया। कभी कभी पीड़ा भी होती थी जब वो बात करते थे, उनके आंखों में आंसू झलकता था और मन दुखी भी होता था कि किसी के परिवार के सदस्य का चला जाना कितना तकलीफ देह होता है। कुछ महिलाओं से चर्चा हुई, किसी ने कहा मेरे बेटे को मार दिए, किसी ने कहा मेरे भाई को मार दिए, किसी ने कहा मेरे बाप को मार दिए, मेरी माता को मार दिए। कुछ ऐसे जगह पे भी हम गए जहाँ नक्सलियों को पुनर्वासित किया गया है,
1: जी
0: उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए या उनके जीवन में आगे वो कैसे बढ़े। अब तो आ गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, अब लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, अपने विचार के साथ उनको लाना भी है, कैसे समाज के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करें इसके बारे में भी सिखाना है। तो महिला और पुरुष अगर दोनों की बात करूं तो बहुत सारे सरकार की ओर से उनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं।
1: जी
0: कुछ महिलाएं कार चलाना सीख रही हैं तो उनसे बात भी हुआ तो मैंने कहा कि कौन कौन कार सीख रहे हो, हाथ खड़ा करो। तो कुछ महिलाएं हाथ उठाई।
1: जी
0: मैं बोलूंगी अभी तो नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार आती हूँ तो आप लोग कार में बैठा के घुमाओगे ना। तो बोले हाँ मैडम। तो ये बातें भी हुई। कुछ महिलाएं सिलाई सीख रही हैं, कुछ महिलाएं राज मिस्त्री का काम सीख रही हैं, मतलब उनकी इच्छा अनुसार,
1: अलग-अलग विधाओं में
0: हाँ उनके इंटरेस्ट के आधार पे उनको बहुत सारे चीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब वहां से वो जब घर लौटेंगे, हमारी योजनाओं का लाभ हम उनके तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि बस्तर संभाग में हमने एक चीज और स्टार्ट किया है, लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने बस्तर में कार्यक्रम किया और वहां लॉन्च किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कुछ महिलाओं को हमने दिया भी है जो आत्मसमर्पण किए, उसमें मिलेट पुरुष सामग्री रहती हैं, वे मार्केट में जाके कहीं पे भी अपना ठेला लगा के, मतलब ठेला के सही दिए हैं, वो कुछ बना के लोकल जो चीज होते हैं, तो काफी इनकम भी हो रहा है। महिलाएं बड़े प्रसन्न होकर ये बात कहती हैं कि मैडम हमको हो रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो अच्छा लगता है, मन सुखी होता है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही हूँ।
1: अभी आपने हाल ही में नई दिल्ली का भी दौरा किया था, और अपने इस नई दिल्ली प्रवास के दौरान आपने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान बस्तर संभाग में जो आपके विभाग की योजनाएं हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी चर्चा हुई। इस बारे में हमें विस्तार से बताएं।
0: माननीय केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से बस्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत चर्चा हुई। एक बहुत बड़ा विषय रहा उस क्षेत्र के लिए कि नक्सल गांव-गांव तक काफी सारे योजनाओं से लोगों को वंचित रहे, स्वास्थ्य से वंचित रखे, शिक्षा से वंचित रखे, आंगनबाड़ी केंद्र से वंचित रखे। अब क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा ऐसा है कि जहाँ महिला हों, बालक हों और बुजुर्ग हों, तो उनकी सेवा करना, उनके लिए कार्य करना

0: हमारा उद्देश्य है कि हम इनको कैसे प्राथमिकता दें, इस दृष्टि से वहाँ की क्या क्या अनिवार्यता रही, हम वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं। इस दृष्टि से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलना हो, और इस चीज पे भी कि केंद्रीय मंत्री जी हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, बस्तर तो नहीं कहूंगी लेकिन कांकेर जिले में चुनाव से पहले उनका ड्यूटी भी लगा था, और कुछ दूरस्थ क्षेत्र में ऐसे नक्सल क्षेत्र भी वो आके देखे, और उन्हें इस चीज का अनुभव भी था कि वाकई में हमारा बस्तर क्षेत्र कैसा रहा है। तो काफी सारी विस्तृत चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के दौरान जो मांगे रही हमारी, जो प्राथमिकताएं रही, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है क्योंकि कभी नक्सली चाहे ही नहीं कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यहाँ के लोग जागरूक
1: जी
0: हों, ये सब विडम्बनाएं रही हैं। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी इस बात से अवगत होते हुए बोले बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष हम फोकस करेंगे, और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र किसी बड़ी कंपनी के जो CSR होता है, DMF होता है, उसके माध्यम से दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब बस्तर के लिए आधा घंटा केंद्रीय मंत्री जी से चर्चाएं
1: विशेष
0: हुई,
1: रूप से उसी को लेकर ही चर्चा
0: वहाँ
1: हुई।
0: फोकस वहाँ के लिए हुई, उनका भी बात वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा भी हमने क्या देख के आया है,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ गोंडी और हल्बी भाषा में लोग ज्यादा समझते हैं,
1: जी
0: और ये भी अनुभव रहा कि पहली बार लोग देख रहे हैं कोई मंत्री उनके बीच जा रहे हैं, वैसे सरकार के सभी मंत्री वहां जा रहे हैं,
1: जी
0: तो महिलाओं का उनसे संवाद हो गोंडी और हल्बी भाषा में, क्योंकि हम तो हिंदी ही उनसे बोल पाएंगे,
1: जी
0: तो एक्सप्लेन करने वाले और रहे हैं, तो
1: जी
0: ये भी समस्या हम अवगत
1: मैं
0: कराए।
1: वही, असल में मेरा अगला
0: जी
1: सवाल ही वही था कि आप मंत्री हैं, एक अनुभव है आपको मंत्री के नाते, और आपने बस्तर का दौरा भी किया, तो ये भी आप जानती हैं कि कोई भी जो योजना होती है, विभाग तो अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करता है, लेकिन योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता की सहभागिता हो उस योजना में,
0: बिल्कुल
1: जनता जागरूक हो, और जागरूक होने के लिए जरूरी है कि योजना की जानकारी उन तक पहुंचे, और यदि उन्हीं की अपनी भाषा या बोली में पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। तो हमें पता चला अपने हाल में जब बस्तर संभाग का दौरा किया और उसके अनुभव के आधार पे आपने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि बस्तर संभाग में जो स्थानीय जो आदिवासी हैं उनकी जो बोली है, चाहे वो हल्बी हो या गोंडी हो, उसमें योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी बिल्कुल, हमने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि हमारे बस्तर संभाग के लिए एक ऐसा हो कि स्थानीय भाषा में हमारे वहाँ के लोग चुन के आए और स्थानीय ही लोग रहे हैं, ताकि गोंडी है तो गोंडी भाषा में वहाँ के लोगों को समझा पाए, कोई हल्बी भाषा वाले हैं तो हल्बी से समझा पाए। तो जब तक हम उनको समझा नहीं पाएंगे, उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जो मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा जो प्रयास रहा है, मुख्य धारा से लोग जुड़े भी हैं, तो अब सहभागिता हम सबकी बनती है, हम सबके दायित्व तो बनता है कि वहाँ के विकास की दृष्टि से हम सबको आगे आना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: प्रशासनिक अपने स्तर से प्रयास कर रही है, शासन अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता भी हमें सहयोग प्रदान करे।
1: जी, एक बात और है मंत्री जी कि योजनाएं खूब अच्छी बन रही हैं, लेकिन आप ये भी प्रयास कर रही हैं कि वो योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू हो, जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगे, इसके लिए भी आपने कदम उठाए हैं। और अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो सहायिकाएं हैं, जो साड़ी खरीद की राशि है अब सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी, इस निर्णय की वजह क्या है इसे बताएं।
0: देखिए, कुछ दिन पहले साड़ी को लेके काफी विवादें हुई, विवाद का कारण क्या रहा मुझे नहीं पता, हमने तो निविदा जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत गए,
1: जी
0: लेकिन कहाँ पे गलतियां हुई इससे अवगत होते हुए हमने ये बड़ा डिसीजन लिया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में जो उसका अमाउंट है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाए, और विभाग से ये निर्देश भी किया जाए कि उनके साड़ी का कोड क्या होना चाहिए, वो हमने तय कर दिया है। अब डायरेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की सहायिका स्वयं से साड़ी खरीद के पहनेगी, जो उनका काम है आंगनबाड़ी केंद्र में, सहायिका का काम है भोजन बनाना, कार्यकर्ता का काम है पढ़ाना, औपचारिक रूप से जो उनके बच्चों को शिक्षा देने का रहता है, खेल खेल में बहुत सारी चीज सिखाने का रहते हैं, संस्कार देने का विषय रहते हैं, वो पूरे मन के साथ कर सके।
1: एक बात और है कि जो महतारी वंदन योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में किस तरह से भूमिका निभा रही है, अब तक इस योजना के कैसे परिणाम मिले हैं, इसके बारे में।

0: भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जैसे ही सरकार बनी, 2 महीने में महतारी वंदन योजना का जो घोषणा था उसको पूरा किया है। आज जनता के आशीर्वाद से जिस महिलाओं को महतारी वंदन योजना मेरे सिग्नेचर से जाता है, लेकिन 1000 का महत्व ये महिला बाल विकास की मंत्री भी जानती है कि क्या होता है उन मिडिल क्लास के महिलाओं के लिए या परिवार के लिए, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है, उसको दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। और हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो 1000 रुपए जो उनके खाते में जाता है, गांव की महिलाएं आपस में इस 1000 रुपए से एक मंदिर का निर्माण किए हैं
0: जी,
1: जो हमारे आस्था का केंद्र रहता है
0: जी।
1: तो इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ हो ही नहीं सकता।
0: एक बात और है मंत्री महोदया, कि प्रदेश में हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, आप भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं, और बस्तर प्रवास के दौरान भी आपने लोगों को, बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। तो जो मुनगा है वो किस तरह से कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में बताएं। और साथ ही राज्य सरकार जो है वो जो सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं।
1: इसमें हमने एक बड़ा निर्णय लिया कि सुपोषण छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बस्तर संभाग के 4 जिले और सरगुजा संभाग के 4 जिले को लिया है जहां कुपोषण की दर अधिक है। तो ऐसे जिलों को चिन्हांकित करके सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान के तहत अतिरिक्त पोषण आहार उनको दिया जा रहा है। हमने प्रदेश भर में ये आह्वान किया है, निर्देशित भी किया है अधिकारियों को कि सभी घरों में मुनगा का पेड़ अवश्य लगाएं, फलदार पौधे अवश्य लगाएं। मुनगा का पेड़ का इसलिए विशेष निवेदन किया है कि मुनगा में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक प्राप्त होता है, कैल्शियम आदि ऐसे बहुत सारे चीज प्राप्त होते हैं मुनगा में। क्योंकि हमें चिंता महिलाओं के साथ साथ गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चों, मतलब वो सिर्फ अकेले अपना ही शरीर नहीं संभाल रही है, वे दो जान को संभाल रही है, अपना भी है अपने बच्चे का भी। तो हमने विशेष निवेदन गर्भवती महिलाओं से भी किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी किया है, सहायिकाओं से भी किया है कि विशेष निगरानी में उनको लेके हर घर मुनगा का ये अभियान चले, ताकि बरसात के सीजन में जब मुनगा 1 साल में तैयार होने वाला पौधा होता है, तो हमने प्रयास किया है कि इस बरसात में, पिछले बार भी किए थे, इस बार और ज्यादा इसको गति देते हुए हमने ये अभियान चालू किया है कि हर घर में मुनगा पौधा लगाएं।
0: बहुत बहुत आभार मंत्री महोदया, आप, मैं जानता हूँ कि बहुत व्यस्त समय रहता है आपका, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार पुनः हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: कार्यक्रम बातों बातों में अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:16 हुए हैं। जुड़ते हैं अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।

0: जीवन।
1: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
2: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर

0: कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
5: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार में आज एक ऐसी फनकार जिन्होंने अपनी गायकी से सबके दिलों को लुभाया।
1: अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें

मैं भी हूं उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली, तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा, तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुन टुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: 1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 24 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी। और महासमुंद की छात्रा रागनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 24 IPS अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। फेरबदल में एक IG रेंज, कई DIG, AIG और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। IPS अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक IG बनाया गया है। जिलों में भी व्यापक बदलाव करते हुए चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा त्रिलोक बंसल को बेमेतरा, सुनील शर्मा को सारंगढ़ बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम, चौहान किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, राय गौरव राम प्रवेश को बलौदाबाजार भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर, मयंक गुर्जर को सुकमा, संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, भावना पांडेय को धमतरी और हरीश राठौर को कोरिया जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा रॉबिन्सन को रायपुर नगर का पुलिस उपायुक्त पश्चिम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। AI तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। इसके आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता तय कर मरम्मत की कार्ययोजना बनाई जाएगी। इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट आज से प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। प्रत्येक जिले में एक एक चुनी गई सड़क का AI आधारित निरीक्षण शुरू किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की जांच में अब तक 3,407.77 करोड़ रुपए की कथित अपराध आय का पता लगाने का दावा किया है। एजेंसी के अनुसार इस मामले में अब तक 573 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियां जब्त या कुर्क की जा चुकी हैं।

0: ईडी ने बताया कि मामले में अब तक 5 अभियोजन शिकायतें विशेष पीएम एलए अदालत रायपुर में दाखिल की गई हैं और जांच जारी है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर मुख्य मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गईं। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। महासमुंद की छात्रा रागिनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सैट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रागिनी साहू छत्तीसगढ़ से चुनी गई इकलौती छात्रा हैं। देशभर से चुने गए 20 विद्यार्थियों में उन्होंने जगह बनाई है। मिशन के तहत 108 देशों के छात्र चंद्र उपग्रह और रोवर विकसित करेंगे, जिन्हें इस वर्ष अक्टूबर में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। रागिनी की इस उपलब्धि पर महासमुंद कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी और महासमुंद की छात्रा रागिनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। श्रोताओं, आज कार्यक्रम अमराई में हम आपको सुनवाएंगे गोरेलाल बर्मन और साथी और केदार यादव और साथियों के गाए कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। तो शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं गोरेलाल बर्मन की आवाज़ में ये लोकगीत।

गोरीलाल बर्मन की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत अभी आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं अगला लोकगीत केदार यादव और साथियों की आवाज़ों में।

अब लीजिए सुनिए अगला लोकगीत। स्वर है सुनीता थवाई तौर साथियों का।

कार्यक्रम अमराई अभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और अब अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए बसंत सोनी की आवाज़ में।

गोरेलाल बर्मन के स्वर में ये लोकगीत अभी आपने सुना। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अंतिम छत्तीसगढ़ी लोकगीत की तरफ और सुनवाते हैं केदार यादव और साधना यादव की युगल आवाज़ों में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

केदार यादव और सुनीता, माफ़ कीजिएगा, साधना यादव की युगल आवाज़ों में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत हम आप तक पहुंचा रहे थे और अब इसी के साथ कार्यक्रम अमराई यहीं समाप्त हुआ। आज कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया गोरेलाल बर्मन और साथियों की आवाज़ों में लोकगीत और केदार यादव, सुनीता थवाइत और बसंत सोनी की आवाज़ों में चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है और अब लीजिए समय हो चला है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, प्यार का पंचनामा 2। इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़, गीत और संगीत हितेश सोनिक का।

प्यार का पंचनामा टू इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मोहित चौहान की आवाज़ थी। गीत और संगीत दिया था हितेश सोनिक ने। और अब लीजिए सुनिए लुटेरा फिल्म का गीत, स्वर स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: कार्यक्रम नए तराने अभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और अब समय हो चला है श्रोताओं आज के ट्रैफिक अपडेट का, जो हमें मिलता है उमा शंकर पांडे से। तो लीजिए सुनिए ट्रैफिक अपडेट और जानिए आपके शहर बिलासपुर में क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा शंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर, आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले की सभी उत्कृष्ट सड़कें, यातायात के प्रति यहाँ के सजग नागरिकों एवं यातायात पुलिस के प्रयास से शहर के साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़कों में हमें कैसे चलना है, कहाँ क्या करना है या कहाँ क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें सड़कों के किनारे लगे यातायात संकेत बोर्ड से मिलती है। जब भी सड़क में हो ऐसे संकेत बोर्ड पर जरूर ध्यान देवें। ये संकेत बोर्ड सड़क निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यातायात संबंधी संकेत बोर्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहला आदेशात्मक संकेत बोर्ड, दूसरा चेतावनी सूचक संकेत बोर्ड और तीसरा सूचनात्मक संकेत बोर्ड। मित्रों, आदेशात्मक संकेत बोर्ड हमें सड़कों में क्या करना है संबंधी आदेश देता है। यह संकेत बोर्ड गोलाकार होता है। यदि इसमें 20 लिखा है अथवा 40 लिखा है तो वहां पर अपने वाहन की अधिकतम गति उतनी ही रखनी चाहिए, अन्यथा विभिन्न स्थानों में लगे स्पीड वायलेशन कैमरे के माध्यम से गति सीमा का उल्लंघन पकड़ा जाएगा और आप जुर्माना के भागीदार होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि इसमें हॉर्न का चित्र बना है और वह लाल पट्टी से कटा है तो वहां हॉर्न नहीं बजाना है। यदि हॉर्न नहीं कटा है तो हॉर्न अवश्य बजावें। ठीक इसी प्रकार दूसरा संकेत बोर्ड चेतावनी सूचक संकेत बोर्ड कहलाता है। यह हमें आगे सड़क की स्थिति की जानकारी देता है, जैसे आगे सड़क में संकीर्ण पुलिया है या आगे यू टर्न है अथवा एन आकार की घुमावदार खतरनाक मोड़ वाली सड़क है आदि आदि, ताकि वाहन चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित कर सके और संभावित खतरे से बचा जा सके। और तीसरे प्रकार का संकेत बोर्ड सूचनात्मक संकेत बोर्ड कहलाता है, जो कौन सा स्थान किस दिशा में और कितनी दूरी पर है की जानकारी देता है। मित्रों, निश्चित रूप से ये संकेत बोर्ड सुगम और सुरक्षित यातायात में सहायक हैं। सभी से अनुरोध है इसका पालन कर अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय

0: भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और अब लीजिए सुनिए लुका छिपे फिल्म का ये गीत। आवाज़ें दी हैं इस गीत में अखिल और ध्वनि भानुशाली ने, कुणाल वर्मा के बोल हैं और संगीत अभिजीत वघानी का।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म कारवां का ये गीत। अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, आकर्ष खुराना के बोल, अनुराग सालकिया का संगीत।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म कारवा का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। शब्द रचना आकर्ष खुराना की थी, संगीत अनुराग सालकिया का।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे गजलें सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए।

0: हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: और अब बढ़ते हैं अपने अंतिम गीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं कॉकटेल फिल्म का ये गीत, आवाज दी है नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने, इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, संगीत से सजाया प्रीतम ने।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाजें थी नीरज श्रीधर, कविता सेठ की, इरशाद कामिल की रचना थी, संगीत दिया था प्रीतम ने। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जाम।

0: मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ गया।
2: गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।
5: विविध भारती पर अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके में करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। फेरबदल में एक आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की संयुक्त बैठक कल रायपुर में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रकोष्ठों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित और सशक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनसेवा की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। इसके आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता तय कर मरम्मत की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट आज से प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। प्रत्येक जिले में एक एक चुनी गई सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है, इसके लिए स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उनकी गवाही विश्वसनीय और सच्ची हो। पुलिस विभाग से होने मात्र से किसी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े एक नक्सली की अपील को खारिज कर दिया और उसकी 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी वार्ड में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल लगाने के दौरान हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आकर करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में 4 पुरुष और 1 महिला है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर मुख्य मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गईं। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके में करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के

0: स्पोर्ट्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल यार रहमान का संगीत।

1947 अर्थ फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी? कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ? वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है? कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा पूछिए तो। हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर जोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान मुस्कान की रोशनी

से चेहरा जगमगा उठता है तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था ये, सुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहा पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि यहाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने तो खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है। बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना, और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। जरा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझा कर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है, क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल, रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी, अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे, ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक

छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं, जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो

मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है। जहां इसे इसने धड़कना छोड़ा, व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफर। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

आह, फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज्यादा की। बहरहाल, कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफर सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है।

आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो।

तो देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक

0: भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए

0: ये गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी, और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आएगी। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट,

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस,
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली, इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मुमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड, लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा, वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: है रहीम की ठाणी, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
1: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
0: हाँ पीर बाबा।
1: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
0: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
1: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
0: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
1: कैसे?
0: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
1: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
0: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
1: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
0: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
1: क्यों भला?
0: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने तवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
1: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत! तूने जान नहीं ले ली उसकी?
0: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
1: तो तू कहां था?
0: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना करम किया है तो चलते चलते एक और करम का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम।

0: काम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घड़ी खमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगणियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, ट्रेन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस में भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
1: राम सिंह
3: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.

0: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
1: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
0: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूं दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूं दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लोटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।

0: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
1: अच्छा, अलविदा।
0: अलविदा। ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: नहीं भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी देरी से
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूं।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना।

0: दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
1: या खुदा।

0: तेरी खुदाई पीर बाबा आप यहाँ?
1: पीर बाबा आपने जहमत उठाई, यहाँ मेरे मौला इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वहीं बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।

0: सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे, उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील
1: जी।
0: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है, तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
1: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी,
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी,
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी, तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ

0: मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी
1: जी
0: शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना? तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे,
1: बिल्कुल
0: और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब
1: जी
0: नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको
1: फ्री
0: काम,
1: नहीं बैठे।
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के
1: जी
0: प्रति,
1: जी जी
0: के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं,
1: जी
0: नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि
1: जी
0: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है,
1: जी
0: और वही पूरी साहब में था।
1: जी

0: पुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: क्या बात है।
1: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले।
0: वाह बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंग

0: मंच और कला शुरू से ही, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक चार लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल। रिम, रिम।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ
1: में।
0: जी
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य।
0: जी
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया,
0: सीखते
1: तब
0: हैं।
1: से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी, कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी, महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी, तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से,
0: जी
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
0: जी
1: उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज,
0: नीरज
1: उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा।
1: जी
0: लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी,
0: महानदी।
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं, वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं, कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए।

0: और आपके सेल्युलॉइड के जरिए। तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस
1: जी
0: करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है।
1: जी
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही
0: याद
1: आती
0: आती
1: है।
0: है।
1: माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: न चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
0: माध्यम बनी,
1: माध्यम बनी। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
0: जी,
1: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
0: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
0: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
1: जी

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी

0: रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पल हम सीखते ही हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए।
1: सही
0: समय
1: कहा।
0: लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो, शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी कि
1: आउटस्पोकन
0: आउटस्पोकन
1: जी
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
1: जी
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत।
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा, स्टार
1: जी
0: नहीं बनते हैं ना।
1: तो
0: जी
1: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
0: तब
1: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में। तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है।
1: जी चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
2: विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, मधुटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, पीठा आमा, महेशपुर

0: चिटबा मड़िया झरिया सोना जोरी झिक्की परसाडाण कुर्डेग सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल धरमजयगढ़ बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये महाराजगंज बंगरसूता कुड़ेकेला बोजिया सिंघीछा बनहर लोटान कंचीरा पोटिया आमगांव झगरपुर सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई जडगा एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई कोदवारी भूडूपानी कठमोरगा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर बनिया चोटिया लालपुर सिमरहा बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 47 है। ये झिंगोल तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी भैंसगढ़ी बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी तालदादर पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार ताराझर कुरवा पानी खोला पारा छिंदौला लूठा पारा फरसरा बोडापाला जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत के आरंभ में लीजिए पेश है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण की तर्ज। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत। लीजिए अब पेश है आशा भोसले और कुमार सानू की युगल आवाजों में आईना फिल्म का गीत। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

पापा कहते हैं इस फिल्म का गीत जावेद अख्तर की शब्द रचना, राजेश रोशन की धुन। लीजिए पेश है उदित नारायण के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश चित्रा और शान की आवाजों में ये गीत जो है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का देव कोहली का लिखा गीत है, अनु मलिक का संगीत।

कार्यक्रम के आखिर में दीजिए पेश है शान और साधना सरगम की आवाज़ों में हंगामा फिल्म का गीत, समीर का लिखा, नदीम शर्मा का संगीतबद्ध किया हुआ।

हंगामा फिल्म का गीत शान और साधना सरगम की आवाजों में आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत श्रोताओं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में। आज आपके साथ है मीनाक्षी।

सिंह जोड़ा सिटी दीवाना घाटापुर से पारा किए श्रोता हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू। बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। रुद्रा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी को सूरज फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ श्रोताओं, और हाज़िर हो गए हैं हम आपके ईमेल लेकर। ये श्रोता साथी हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया, धरदी सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा, भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौदी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी, अमलेश्वर से डोमन सुमन, मिथिलेश तारिणी ठाकुर, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, बहादुरा नागपुर से शैलेश कवाणकर, वैशाली श्वेता, सुमित ध्वनि परी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, दिल्ली से मालती शर्मा, माया शर्मा, दिव्या और सीमा, नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमाबाई, विष्णु प्रसाद तिवारी, दिल्ली से सुखविंदर

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना ये गीत सूरज फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और अगले गीत की फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी साहिल भारती बघेल, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, नलगोड़ा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनीर निसा, आयशा तबस्सुम, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव, सानेत राम, भूपेंद्र साहू, लुतरा खमरिया से नकुल

शाह मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, जिला भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, निकिता, दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहर्ष लोक, प्रियांश, श्रेयांश, अनुभूति अग्रवाल, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ कश्यप, मिथिलेश, टोमिन बंछोर, यश प्रयाण और शिवम वर्मा, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी, अफजल मलिक, करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद, किरीडी झारखंड से साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन अनजान, हसन नवाज, अहद मिफरा नवाज, चाहत और सादिया। दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, मोहम्मद रफी के स्वर में राजा मेहंदी अली खान के गीत को संगीत से सजाया मदन मोहन ने।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। ईमेल पर मिली हुई अगली फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। ग्राम उच्च भट्टी से मधु आशी शिवन्या गोस्वामी मुकेश गोस्वामी। पलारी से नीतीश कुमार लखन लाल सावित्रीबाई ईशांत तनुजा देवांगन। आमाखोड़ा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह नेताम दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम। पिपरलोर सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश वर्मा। विलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन शाहनवाज सुहान सरफराज फरदीन अरजान अबान अब्बासी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि शीतल राजेश। दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका भानु प्रकाश निशु दीदी। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा और तुलसी गोस्वामी। बलौदाबाजार लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्र वर्मा। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनयशंकर पांडे। दहलीज फिल्म का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वरों में सुनते हैं। हसन कमाल का लिखा गीत है रवि का संगीत।

0: रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जोई, यामुना और उमा तिवारी, हरहरपुर मटकली बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी, डीजे प्रधान, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, विशाल सपकाल, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, कोल सिटी बरकाखाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्लीम, निप्पी मोहम्मद अफजल मलिक, अड़ारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुल जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, पुरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई कुम्हारहेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाइसिया इब्राहिम, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां और मन्नत जहां। गीत उनका गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों में लीजिए पेश है, हसरत जयपुरी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ।
1: जिस

जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी चौहान, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमदेव, नामदेव और धर्मदास वाधवानी, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव, यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, प्रियांशी, देगलू नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, पांडरकवड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशु, विशाल, आरवी टिवानशी, शालिनी, जीवन, लड्डी खेरा, पुरगहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आपकी फरमाइश पर पेश है अनजान की शब्द रचना, अनु मलिक की धुन, एक जान है हम फिल्म का ये गीत।

शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, एक जान है हम फिल्म का। इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज शाम 7:20 पर ग्राम सभा में सुनेगा बेरा के गोठ। विषय रहेगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य। किसानवाड़ी में आज के बाद सीप से मोती उत्पादन विषय पर सुनेगा। भेंटवार्ता में सुनेगा राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना विषय पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उप संचालक कृषि कार्यालय विनोद साहू से की गई बातचीत। रात 8 बजे सुगम संगीत में हंसराज हंस के गाये चंद गीत आप सुनेंगे। रजनीगंधा हम पेश करेंगे रात्रि 8:15 पर।

श्रोताओं, कल के कार्यक्रमों में कल सुबह 6 बजे सुनिएगा आराधना, 6:05 पर खेती की बात सुनिएगा, जिसमें सामयिक सुझाव का विषय रहेगा फसलवार बायो फर्टिलाइजर के उपयोग, वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का होगा। खेती की बात 6:30 पर आप सुन सकेंगे। 6:35 पर रामचरित मानस का गायन सुनिएगा। चिंतन में 6:45 पर स्वामी आत्मानंद का आलेख आप सुनेंगे, जीवन की सार्थकता विषय पर।

0: सुबह 7:40 पर सदाबहार नगमे, 7:05 पर आज सुबह और 10:30 पर नए तराने हम पेश करेंगे। 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें जानेंगे त्वचा रोग के बारे में। सुबह 10 बजे आओ बच्चों में सामयिक चर्चा में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पर बातचीत और प्रायोजित कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी मोहनदा रतनपुर के बच्चों की प्रस्तुति। कल शाम 6:30 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे कानून की बात। इसमें सुनिएगा स्थायी लोक अदालत जलोपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका विषय पर श्री गौरव सतपथी अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग से की गई बातचीत। कल शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट चित्रपट संगीत 5:05 पर और ईमेल करें गीत सुने 5:35 पर 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे। 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोठ का विषय रहेगा जल संग्रहण भविष्य के आधार। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत और मौसम मंडी सामिक सुझाव भी होंगे ग्राम सभा में। रात 8 बजे सुगम संगीत में सुनिएगा हरिहरन के गाय चंद गीत। रजनीगंधा का समय होगा रात्रि 8:15 का। 9:15 पर आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज महतारी वंदन योजना के 29वां किस्त में 66 लाख माई लॉगिन के बैंक खाता में भेजिस पैसा। गृह मंत्री हा आज समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास काम में तेजी लाए के दिन निर्देश और राज्य सरकार हा पुलिस अधिकारी मन के करिन तबादला। आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मन बदले गए है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज रायपुर के निवास कार्यालय ले महतारी वंदन योजना के 29वां किस्त में 66 लाख माई लॉगिन के बैंक खाता में 626 करोड़ रुपया ले ज्यादा के पैसा भेजिस। ए मौका में श्री साय हा कहिन की राज्य सरकार हा महतारी वंदन योजना के संगे संग लखपति दीदी जैसन आने आने योजना के माध्यम ले माई लॉगिन मन के कमाई ल बढ़ाए उमन ला आर्थिक रूप ले सशक्त बनाए और आत्मनिर्भरता के दिशा में आगू बढ़ाए बर काज करत है। सुनिया मन ला बता दन की ए योजना में अब तक माई लॉगिन मन के खाता में करीब 18,806 करोड़ रुपया भेजे जा चुके है। राज्य सरकार हा भारतीय पुलिस सेवा के 24 जन अधिकारी के तबादला आदेश जारी करे है। गृह विभाग को तिले जारी आदेश अनुसार आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मन ला बदले गए है। आईपीएस अजय कुमार यादव ला राजनंदगांव रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए है। उन्हें जिला मन में घलो बड़का बदलाव करत हुए चंद्रमोहन सिंह ला दंतेवाड़ा जिला के नवा पुलिस अधीक्षक बनाए गए है। एकर अलावा त्रिलोक बंसल ला बेमेतरा, सुनील शर्मा ला सारंगढ़ बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव ला कबीरधाम और चौहान किरण गंगाराम ला बालोद के एसपी बनाए गए है। संगे संग योगेश कुमार पटेल ला सूरजपुर, राय गौरव राम प्रवेश ला बलौदा बाजार भाटापारा, उमेश कुमार गुप्ता ला बीजापुर और मयंक गुर्जर ला सुकमा जिला के जिम्मेदारी सौंपे गए है। ऐसने संदीप कुमार पटेल ला नारायणपुर, भावना पांडे ला धमतरी और हरीश राठौर ला कोरिया जिला के नवा पुलिस अधीक्षक बनाए गए है। एक अलावा रॉबिन्सन गुरिया ला रायपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त बनाए गए है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हा आज मंत्रालय महानदी भवन में रखे गए पुलिस विभाग के समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राहत पुनर्वास और

0: विकास काम में तेजी लाए के निर्देश दिन। ओमन किहिन की नक्सल मामला में जेल में बंद ऐसन आरोपी जेकर खिलाफ ज्यादा गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं है ओखर मामला में नियमानुसार समीक्षा करके रिहाई के प्रक्रिया शुरू करे जावे। उप मुख्यमंत्री ह किहिन की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास पर शासन कोती ले नक्सल मुक्त प्रस्ताव पास करके ऐसन गांव में 1-1 करोड़ रुपया के विकास कार्य स्वीकृत करे जाही, जेखर ले ग्रामीण मनला आय के साधन तो मिल ही संगे संग गांव के विकास घलो हो ही। एक ठिन आने बैठका में श्री शर्मा हा बस्तर के ऐसन गांव मन के पहचान करे के निर्देश दिन है जिहां आज तक किसनहा मन रासायनिक खातु नहीं बउरे है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने गांव के रद्दा मन के निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक ले करे जाही। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा हा अधिकारी मल्ला ए व्यवस्था लागू करे के निर्देश दे है। एमा हर महीना रद्दा के वीडियो निरीक्षण होही और AI तकनीक हा गड्ढा दरार और आने आने नुकसान के पहचान करही। रिपोर्ट के आधार में सबले ज्यादा खराब रद्दा के मरम्मत के कार्य योजना ला सबले पहली बनाई जाही। ए नवा व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट आज ले प्रदेश के सबो जिला में शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा कही ने कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सिर्फ पुलिस गवाह मन के आधार में घलो सजा हो सकत है, एखर बर स्वतंत्र गवाह जरूरी नहीं है। कोर्ट हा कहिन कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यवहारिक नहीं होए। ऐसन स्थिति में केवल पुलिस अधिकारी मन के बयान के आधार ऊपर घलो आरोपी ला दोषी ठहराए जा सकत है, बसरते उखर गवाही हा विश्वसनीय और सही हो। सिर्फ पुलिस विभाग में होए ले कोनो गवाह के बयान ल खारिज नहीं करे जा सके। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच हा ए व्यवस्था देवत हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन ले जुड़े एक नक्सली के अपील ल खारिज कर दिस और उखर 10 बछर के सजा ल जारी रखे है। उन्हें एक आने मामला में हाईकोर्ट है राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेज मन में BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में भर्ती पर राज्य सरकार के न्यूनतम 10% अंक पाए के अनिवार्यता ला अवैध ठहरात हुए रद्द कर दीस। कोर्ट है कि इसकी केंद्र सरकार के वैधानिक संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC को तिले दे गए छूट ला राज्य सरकार है अपन मर्जी ले नहीं बदल सके। जस्टिस AK प्रसाद के सिंगल बेंच है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन और एक ठन आने याचिका के संग्रह सुनवाई करत हुए ये आदेश जारी करीस। कोर्ट है राज्य सरकार ने निर्देश दिन है कि INC को तिले दे गए छूट के जैसन बगैर कोनो न्यूनतम परसेंटाइल के शर्त के सिर्फ मेरिट आधार में 15 दिन के भीतर नवा सिरा ले काउंसलिंग के प्रक्रिया शुरू करे जावे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। नगरी प्रशासन और विकास विभाग ह प्रदेश के सबो नगर निकाय ला चिट्ठी लिख के खुला गड्ढा ले लइका मन ला जान के खतरा होय के सेती सुरक्षा उपाय के निर्देश दे है। पत्र में कहे गए है कि नगरी क्षेत्र में अभियान चला के खुला गड्ढा खुला नाली और निर्माण होवत जगह ला पहचान करके ओकर चारों कोती सुरक्षा घेरा बनाए जाए जेखर ले लइका मन सुरक्षित रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ह महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला के जांच में अब तक 3,407 करोड़ 77 लाख रुपया के कथित आपराधिक आय ला पता लगाए के दावा करे है। एजेंसी अनुसार अब तक 573 करोड़ रुपया ले ज्यादा के चल और अचल संपत्ति ला जब्त या कुर करे जा चुके हैं और 5 ठन अभियोजन शिकायत रायपुर के विशेष PMLA अदालत में दाखिल करे गए है जेमा जांच जारी है। महासमुंद के पढ़िया लड़का रागिनी साहू के चयन अंतरराष्ट्रीय चंद्र मिशन यानी शक्ति सेट पर नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हो है। रागिनी है छत्तीसगढ़ ले चुने गए इकलौता छात्रा है। ए मिशन में 108 देश के पढ़िया लड़का मन है चंद्र उपग्रह और रोवर बनाही जिला ए बछर अक्टूबर में इसरो है श्री हरिकोटा ले लॉन्च करी। रायगढ़ जिला में आज

0: हाथी के हमला में दो लोगन के मौत हो गए। धरमजयगढ़ डिवीजन के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय है बताइन कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत तालगांव में एक जंगली हाथी है माई लोगन ऊपर हमला कर दिस जेखर ले ओखर मौत हो गए। उन्हें छाल वन क्षेत्र के और नारा गांव में घलो हाथी के हमला में एक मजदूर के मौत हो गए। सुनिया मल्ल बता दें कि राज्य में ए हफ्ता के भीतर हाथी के हमला में 3 जन के मौत हो गए है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई पुलिस 8.5 करोड़ रुपया ले ज्यादा के साइबर ठगी के मामले में फरार एक आरोपी ल पकड़े है। आरोपी के पहचान सुपेला निवासी राकेश शर्मा के रूप में हो है। सुपेला निवासी राकेश कुमार के रूप में हो है। पुलिस ले मिले जानकारी अनुसार आरोपी ह पूछताछ में अपन अपराध ल मान ले है। ओकर तिल ले मोबाइल सिम कार्ड और आने डिजिटल साख्त जब्त करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश जहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही ए दारी के अंक में आप मन बस्तर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। मुख्य सचिव विकासशील के अगुवाई में काली मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तैयारी ल लेके अधिकारी मन के संग एक बड़का बैठका होइस। बैठका में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के तैयारी के बारे में विचार करेगी। संगे संग स्वतंत्रता दिवस समारोह के आने आने व्यवस्था पर अधिकारी मन के जिम्मेदारी घलो तय करेगी। बैठका में बताएगी कि राजधानी रायपुर के पुलिस पलेट ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन बिहनिया 9 बजे ले हो। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। मुख्यमंत्री है आज महतारी वंदन योजना के 29वां किस्त में 66 लाख माइलोगिन के बैंक खाता में भेजिस पैसा। गृहमंत्री है आज समीक्षा बैठका में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास काम में तेजी लाए के दिन निर्देश और राज्य सरकार है पुलिस अधिकारी मन के करीन तबादला। आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मन बदले गए है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने।

रोहतक के यश होता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, कुलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश पांडुरंग कुंभार, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मुनी प्रिंस बोध, सीताराम, साहिल कांगड़ा, और एठीपारा भाटापारा से अनीता, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, लालपुर मारू से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, निशांत ध्रुव, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमारसा कलेश्वर, सुखराम हीरामणि पैकरा, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना, चेतन भगत। सुनवारे श्रोताओं, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, प्रीतम का संगीत, गैंगस्टर फिल्म का गीत अभिजीत के स्वर में लीजिए पेश है।

भूजो कैचिया भटिंडा से परम सिंह जोड़ा मनजीत करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम धमन और अभिजीत पथरिया भरेवा से चंदूला सिंह रोल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंह रोल मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह अवंदीप दिल्ली से अजीम वकार माहिर अजीम जेबा अजीम मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु सागर बालूजा आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश श्वेता सुमित ध्वनि परी मेहरनगर उमरखेड़।

महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रणीता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर। ग्राम गुजरात से प्रवीर सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। भाटापारा से विष्णु साहू, पूरव वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी साहू। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दयापुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले। गोगाना खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री। सुनवा रहे हैं आप सभी को आवारापन फिल्म का ये गीत, सुजैन के स्वर में, सईद कादरी की शब्द रचना, प्रीतम की धुन।

अगले गीत के लिए ईमेल पर मिली हुई फरमाइशें आप सभी की, सौंगा मगर लोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ हेयांश चंदन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम, कृष्णा देवांगन, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया आयान, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेन्द्र, साहिल चंद्राकर, खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी संजय, संध्या शिवम कोलाम, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश साह।

हूँ राहुल साहू, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंत राव निवृत्ति आड़ोकार, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार श्वेता किसु तासु अर्णव सत्यम आनंद, बिराईगढ़ से खीकराम देवांगन रेनु रजनी प्रियंका देवांगन, हासी से राजू मिगलानी बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी सुभाष योगी, भिलाई से मुकेश शर्मा सरिता गौरव गरिमा शर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखल कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला बेन शाह राजेंद्र जी शाह। आशिकी फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वरों में सुनते हैं। ये गीत समीर के बोल को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अगले गीत की फरमाइश आप सभी की। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल आभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र, आचार्य रोनी जैन, प्रमोद दम्माणी। पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका ममता अरोड़ा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। सावतपुर से ऋषि, रितेश कंचन और माही सेन। दिल्ली से सुमित्रा देवी, सोनिया देवी, आयशा रानी। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मुस्कान, योगेश मालाकार। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी वर्मा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। यवतमाल से पंजाब यशोधरा, श्राव्य राम टेके। सुना रहे हैं आप सभी को मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत, किशोर कुमार और अलीशा चिनाई की आवाज़ों में ये गीत है। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: मिस्टर इंडिया का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब रायपुर से रिले करेंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। नक्सली प्रकरणों की वापसी के लिए अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय

0: में बैठक होगी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ ही लखपति दीदी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
1: आज महतारी बंधन योजना के तहत 29वीं किस्त जारी किए हैं और इस तरह से अभी तक कुल 18,800 करोड़ रुपए से अधिक हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन की राशि भेज चुके हैं और इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और जब वो मिलती हैं कार्यक्रमों में तो बहुत खुश होती हैं। अलग अलग तरीके से उनका अनुभव सुनने को आता है, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हमारी माताएं करती हैं, तो इस तरह से आर्थिक रूप से हमारी माताओं का बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है।
0: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज मंत्रालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों में विधि सम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन और वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी के संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि नक्सल प्रकरण की वापसी के लिए हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे गांव में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को आजीविका के साधन मिलेंगे, साथ ही गांवों का विकास भी होगा। इसके लिए 50 गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें सुकमा और बीजापुर के 20-20 तथा नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाए। राज्य सरकार ने बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बस्तर के उन गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए जहाँ आज तक किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव छत्तीसगढ़ की धरोहर है और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है, इसके लिए स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उनकी गवाही विश्वसनीय और सच्ची हो। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े एक नक्सली की अपील को खारिज कर दिया और उसकी 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के न्यूनतम 10% अंक पाने की अनिवार्यता को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईजी, डीआईजी, एआईजी सहित 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य में प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म को नई पहचान देते हुए जंगल सफारी में वन महोत्सव और इको ट्रेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के साथ तेंदुआ दादर इको ट्रेल का भ्रमण किया। वन महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ने जिले में 50,000 सीड बॉल रोपण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर 1,00,000 पौधों के वितरण अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट वितरित किए। रायगढ़ जिले में आज जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। धरमजयगढ़ डिवीजन के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तालगांव में एक जंगली हाथी ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं छाल वन क्षेत्र के ग्राम और नारा में भी हाथी के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। गौरतलब है कि राज्य में एक सप्ताह के भीतर हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। सेंसर आधारित ये प्रणाली 24 घंटे नदियों के जलस्तर की रियल टाइम निगरानी करती है। जलस्तर चेतावनी या खतरे के स्तर तक पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर तत्काल अलर्ट भेजा जाता है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखकर खुले गड्ढों से बच्चों की जान को खतरा होने के कारण सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों को चिन्हांकित कर उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया जाए, ताकि बच्चे उससे सुरक्षित रहें। साथ ही निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देश जारी कर गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए जाने को कहा गया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुपेला निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। महासमुंद की छात्रा रागनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। शासकीय आशीबाई गोलचा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रागनी साहू छत्तीसगढ़ से चुनी गई इकलौती छात्रा है। देशभर से चुने गए 20 विद्यार्थियों में उन्होंने जगह बनाई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कल 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी कल रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से कल 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित गए हैं। सरगुजा जिले में कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायपुर जिले के धरसीवा थाना क्षेत्र में आज कुंभरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और बिलासपुर में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल लगाने के दौरान हाई टेंशन तार की

0: चपेट में आने से एक महिला सहित 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। नक्सली प्रकरणों की वापसी के लिए अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी। और रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून से महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 0775226592 3100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। निजे पेश है कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। और शामिल कर रहे हैं आप सभी के ईमेल वाशिम महाराष्ट्र के ये श्रोता हैं, विठल सूरश, सुषमा, परिधि, मायरा, दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि, महेश रामटेके, तखतपुर के श्रोता हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, बुलढाणा और शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, डोगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रेमझिम गुप्ता, बागबहरा भदरसी से पन्नाला सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, देवरी भाटापारा से गन्नूला रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, ओमकारेश्वर से सपना, अंबिका, अनीता, चिंकी, मिंकी, पिंकी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली छत्री। अभिमान फिल्म का गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मनहर के स्वरों में। मजरूह का गीत है एस टी बर्मन की तर्ज।

अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनहर के स्वरों में आपने सुना, और अगले गीत की फरमाइश आप सभी की अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगेल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर, शुभदीप सिंह, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्ण घोड़गे, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा, लसूड़िया पाता राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परिकृतिका, रमेश चंद्र डांगी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद महेंद्र कपूर को आप सुनते हैं श्रोताओं हमराज फिल्म के इस गीत में, साहिर की रचना, रवि की धुन।

अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली धनंजय कटनकर, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा सुरेश, पथिव कृष्यू, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ, प्रियंका पूजा, लीलू रितु, डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली पूजा, आरती और प्रभा देवी तामुरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। यशुदास की आवाज में लीजिए, सुनिए ये गीत दादा फिल्म का। कुलवंत जानी की शब्द रचना है, उषा खन्ना का संगीत है।

कार्यक्रम ये मिलकर गीत सुने की अंतिम पेशकश आप सभी की फरमाइश पर राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, जवानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, मालोट पंजाब से राज शर्मा, योगेश मीना, निवान सौरव सहना, मैंडी शर्मा, रोपण पंजाब से हरदेव मिका, जयतेग बलविंदर मिका विर्क, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव सैनी, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजपत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू, रेशमा साहू, पूड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन। तलत अजीज के स्वर में पेश है श्रोताओं डैडी फिल्म का गीत, सूरज सलीम का लिखा गीत है, राजेश रोशन का संगीत।

तलत अजीज के गाय डैडी फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मन ल फुलुआ बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। औ संगी हुआ बने बने खेती किसानी करैया किसान भाई बहनी मन तो बढ़िया दिन रात मेहनत करत रथे और नवा नवा उद्यम करत रथे। यही आप मन हा नवा नवा उद्यम करता तो बढ़िया दो चार पैसा आमदनी घलोक मिल जाते और कई ठन योजना में घलोक शामिल होता। यही और कई ठन सरकार घलोक चलाते योजना तो हाँ आप मन बने। हाँ भाई मुस्कावा था काहे नहीं। तो आज हमन गोट बात करबो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्य। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार के योजना है जेकर शुरुआत 2005-06 में होय रही से 2014-15 ले राष्ट्रीय बागवानी मिशन ला मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में शामिल करे गए रही से। ये योजना हर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और राज्य सरकार के माध्यम ले लागू करे जाते। ये योजना के उद्देश्य है फल सब्जी फल मसाला और औषधि पौधा के बढ़ावा देना और किसान मन के आय में बढ़ोतरी करना। ये योजना के तहत किसान मन नवा बाग लगाए बर उच्च गुणवत्ता वाले पौधा ट्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई पाली हाउस ग्रीन हाउस कोल्ड स्टोरेज पेक हाउस और प्रशिक्षण जैसन सुविधा बर सरकार ह सब्सिडी घलोक देते और नया तकनीक के सहायता घलोक देते। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मनखे मन किसान स्वयं सहायता समूह उत्पादन संगठन एफपीओ सहकारी समिति और नर्सरी उद्यान उद्यमी मन सब्सिडी के पात्र होते। ये योजना में फल सब्जी के नवा बाग लगाए बर सब्सिडी घलो मिलते जैसे कि ऊपर में कहे हन हमन 40% ले 50% तक और ड्रिप और इंस्प्रिंकलर सिंचाई बर 45% ले 55% नर्सरी विकास और पौधा उत्पादन बर 50% पाली हाउस ग्रीन हाउस निर्माण बर लगभग 50%

0: कोल्ड स्टोरेज पे एक हाउस भर 50 ले 55% सब्सिडी मिलते। प्रशिक्षण क्षमता विकास भर कोहों कोहों जगह में देखे जाते तो 100% घलोक सब्सिडी मिल जाते। भले ही सब्सिडी के दर हर राज्य और क्षेत्र के अनुसार बदल सकते है, सामान्य मा पहाड़ी क्षेत्र मा और अन्य जगह मा बदल सकते है। और राशि हर सीधा सीधा सीधा डीबीटी के माध्यम ले किसान के बैंक खाता मा आ जाते। और गोट बात कर बो संगी हुआ ये संदेश ला सुने के पाछू मा
1: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक न कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संगी हुआ संदेश सुनत रहें और हम अन्हा अभी गोट बात करत रहें, राष्ट्रीय मिशन है ना बागवानी के गोट बात करत रहें बारे में, तो एक हर लाभ पाए बर, योजना के लाभ पाए बर लाभार्थी किसान भाई बहनी मन का करेल पड़ी। सबले पहली अपन जिला के उद्यान और कृषि विज्ञान विभाग में संपर्क कर सकत हवा इमन, जहां सुविधा के अनुसार राज्य के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले आवेदन कर सकत है, ऑफलाइन घलक आवेदन कर सकत है कृषि विभाग में जानकारी लेहे के पाछू। आवेदन करे बर का दस्तावेज लगी संगी हुआ, तो अभी बतावत हन आप मन ला, दस्तावेज लगी आप मन ला आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूया के दस्तावेज और अपन मोबाइल नंबर देना आवश्यक हो जाते। विभाग द्वारा आवेदन के जांच और भौतिक सत्यापन करे जाते, फिर स्वीकृति मिले के बाद किसान मन ला बागवानी पाली हाओ सिंचाई और आने कुछ लगाए बर आप मन ला सब्सिडी मिल सकत है, तो ए हिसाब ले आप मन हा ले सकत हा लाभ। अब अतका कन सब्सिडी मिलते भाई हो किसान भाई बहनी हुआ, तो जम्मो झन खचित रूप में लाभ लेवा। अब देखा संगी हुआ वर्षा ऋतु तो चालू हो गए है और पानी हा गिर के चार दिन गिर के फिर बंद हो जाते, तो वर्षा के दौरान कृषि मन हा सुखा जाते, तो एला सब ला चेत राखे बर हमी मल्ल पढ़ी हमार किसान भाई बहनी मल्ल, तो एक हर संचय करके रखना चाहिए। जल है तो जीवन है संगी हुआ, बिन पानी सब सुन, पानी नहीं रहे तो सब सुन ना हो जाते, पानी के बिना हमन ल चारों कति अंधियार दिखते, तभी तो अब पानी के एला हमन अंधा धुन खर्चा करथन, पानी के दोहन करथन। देखे जाए तो पानी के मुख्य स्रोत वर्षा जल ही है और अधिकांश जगह में बछर में दुए महीना हा वर्षा हो पाथे। देखे जाते तो जानकार मन गई थे कि लगभग 4000 घन मीटर पानी के वर्षा होते और ओमा 28000 घन मीटर ही बचा पाथन और दिनों दिन पानी के कमी होवत जाते। जानकार मन अनुमान लगाते कि अवैया बच्छर 2050 में पानी के बहुत तेज कमी हो जाए, तो काहे नहीं हमन ला जल संरक्षण करे बर मानसून के वर्षा ला हमन ला अपन बागवानी के तीर मा जिन में ढलान है वो जगह मा गड्ढा खोद के पॉलीथीन प्लास्टिक ला बिछा के चारों कती गड्ढा बिछा के एक एक फीट के वहाँ कोंटा कोंटा मा पत्थरा के सहायता ले बांध देहे बर और बांधे के बाद वो पॉलीथीन मा वो पानी जम्मो जा

हवाय ढलान के जिन वर्षा के पानी गिरथे वो ढलान में भरत जावे तो हमन ला पिछू सिंचाई करे बर यह बहुत सहायता हो जाए। और पहली के जुन्ना समय में हमार सियान मन देखे जाते के गांव गांव में संगी हुआ कुआं रहे बावड़ी रहे वो कुआं एकर बर रहे कि अपन पहली तो ते नल नहीं रही से अब तो नल चालू करके छर छर छर छर उड़वा देथन तो कुआं के सहायता ले बारह महीना पानी ला पुरवाए हमार सियान मन के मन तो संगी हुआ आपो कुआं और बावड़ी और तालाब असन बना के पानी ला संचय करा बहुत जरूरी है। अब संगी हुआ देखते देखत किसान वाड़ी के बेरा हो गए तो चला चली आगू बात किसान वाड़ी में करबो। किसान वाड़ी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

स्वागत है, स्वागत है संगी हुआ, अभिनंदन है आप मन के। मैं आरुप कार्यक्रम किसान वाड़ी मा मैं फुलवा बहनी एक पैत स्वागत करत हूँ फिर। तब तो आज के बात में हमन करबो संगी हुआ सीप से मोती उत्पादन। कथेना स्वाति नक्षत्र के बारिश के पहली बूंद है सीप में, जब बूंद पड़ते तो मोती बन जाते और केरा के अंदर जाते तो कपूर बनते और सांप के सांप लेते वो बूंद ला तो विष बन जाते। तो मोती के जन सीप सुताई के भीतरी में जाते तो वह बढ़िया सुघर चमचमात मोती बन जाते। हमार किसान भाई बहनी मन आजकल देखिया ता मोती उत्पादन में बहुत आगू बढ़त है और उत्पादन करके मुनाफा कमावत है। संगे संग संगी हुआ मछली पालन कुकरी पालन जम्मू करते, लेकिन मछली पालन और मोती पालन करते वो संगी मन भारी मुनाफा कमावत है। सीप ऑयस्टर सीप ले मोती उत्पादन के प्रक्रिया ला वर्ल्ड कल्चर कही थी। प्राकृतिक चाहे कृत्रिम दोनों ढंग ले एक हर आप मन उत्पादन कर सकता था। और सीप के जन सुताई है उखर भीतर मा न्यूक्लियस डाले जाते, ओला कथे बीज बीज डाले जाते जेखर ले जेमा सीप ने करके परत चढ़ा के मोती के निर्माण करते। और 6-7 महीना मा यह छोटे रूप में तैयार हो जाते और बढ़िया बड़े रूप में जैसे मूर्ति उर्ति के आकार देहे मा आजकल संगी हुआ कई ठन रूप मा एक हर आकार देवा थे मोती के, तो वह एक ले डेढ़ बछर लग जाते। सीप के खेती करे बर बांस चाहे पीवीसी मा नायलोन बैग मा हर बैग मा नायलोन के एक ठन जाली वाले बैग आते, हर बैग मा एक ठन या दो ठन सीप सुताई रखे जाते और 1 मीटर के गहराई वाले तालाब मा बोला रखे जाते, उमा एला छोड़ दे जाते सुताईला। तालाब में कई ठन खर भोजन होते संगी हुआ, अपने आप भोजन तालाब में रहते तब बन जाते, जैसे हरियर हरियर काई रहते सेवाल रहते ओला सीप मन हा खा के अपन भोजन ले लेते। और नहीं तो आप मन हा वैज्ञानिक तरीका से पाले हा तो खली और चाउर के पालिस ओला सब खवाए ला पड़ते, तेखर हिसाब से ओला भोजन मिलते। 20-30 हजार सुताई यानी सीप प्रति हेक्टेयर में पाले जाते। सीप के भीतर ले निकलिया पदार्थ जेन केंद्रक चिपचिपा पदार्थ रहते वह चारों कति बगर जाते, देखल ले धीरे धीरे वही पदार्थ है उमा भीतरी में रेती घुसर जाते, वही पदार्थ ले धीरे धीरे वह घसरा घसरा के मोती के रूप ले लेते। मोती के खेती करो किसान भाई मन, बाजार में एकर बढ़िया मांग है। मोती के बहुत अकन सौंदर्य प्रसाधन बनाते और औषधि घलक बनाते और गहना जेवर के रूप में घलक बनाए जाते। तो अब संगी हुआ पारी है।

0: भेंट वार्ता के। अब आप मन हा खेती ले ला रसायन मुक्त बना के बढ़िया ढंग ले उत्पादन मा बढ़ा सकत है उत्पादन ला आप मन, और माटी के स्वास्थ्य ला घलो संगे संग मनखे के स्वास्थ्य बढ़िया बेहतर हो है। यही पाए के सरकार के योजना चलत है। अभी आज के भेंट वार्ता के माध्यम ले जानबो, विषय है राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना। जानकारी देवत है आप मन हाँ श्री विनोद साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर के। इखर लंग गोट बात करत है नंदू भैया, आवा सुनन भेंट वार्ता ला।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार, संगवारी हो। आज हमन आप मन बर बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके आए हवन।

0: या आवासुनन भेंटवार्ताला।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार, संगवारी हो। आज हमन आप मन बर बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके आए हवन, जेकर विषय हवे राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में हवे। और हमर बीच में पहुना मन हवे श्री विनोद साहू जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो आप मन, उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर में। गोठ बात ला हमन शुरू करा थन संगवारी हो, और सर जी से हमन जुड़ा थन। तो सर जी जय जोहार, राम राम।
2: जय जोहार किसान भाई मल्ला, राम राम।
1: संगवारी मल्ला बताओ सर, जो ये प्राकृतिक खेती आए, जैविक खेती जौन है, ये जैविक खेती मिशन योजना के बारे में बताओ का होते और किसान भाई मन एकर कैसे लाभ ला ले सकते।
2: जैविक खेती मिशन छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण योजना है, जिन किसान भाई मल्ला जैविक खेती कैसे करना चाहिए, ओखर लिए किसान मल्ला प्रोत्साहन सामग्री और प्रशिक्षण, और जो है किसान मल्ला जगह जगह दूसर राज्य में भी जैविक खेती दिखाए बर भ्रमण कराए जाते।
1: जी जी, बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आओ जानबो के योजना के अंतर्गत किसान मल्ला का फायदा होते, कृषि विभाग द्वारा का फायदा प्रदान करे जाते, जेकर ले संगवारी मन के बढ़िया खेती किसानी में मदद मिले, तो इहुल बताओ सर।
2: जैविक खेती मिशन योजना में किसान मन ला क्लस्टर में खेती कराए जाते, जिन में 20 किसान के एक समूह बनाए जाते। 20 किसान के समूह में बना करके उखर जैविक खेती के लिए ग्रुप बना करके पंजीयन कराथन।
1: अच्छा,
2: उखर बाद जो है किसान मन ला कृषि विभाग से पहली साल बीज उमल्ला निशुल्क उपलब्ध कराथन, जिन में जैविक खेती कर सके।
1: अच्छा,
2: ओखर अलावा बीज उपचार करे पर जैविक फफूंद नाशक सीडोमोनास भी ओखर साथ में देथन।
1: अच्छा,
2: ये तो शुरुआत में हो गए। ओखर बाद जैसे ही हमार खेती हो जाते, तहां रासायनिक खाद के बदला अन्य खाद डाले पर का करे ओखर विकल्प के रूप में।
1: जी,
2: विकल्प के रूप में हमन हरी खाद के बीजा, यदि हरी खाद के बीजा उपलब्ध नहीं हो पावे तो जो है वर्मी कंपोस्ट, जिला हमन केचुआ खाद के थन, ओहू यदि उपलब्ध नहीं हो पावे तो प्रोम
1: जी
2: उपलब्ध करा थन।
1: जी,
2: एकर अलावा जो है जो पोषक तत्व है वह जिन जैविक पोषक तत्व कर था के थन, फास्फोरस घोलक घुलनशील बैक्टीरिया, जिंक घुलनशील बैक्टीरिया, पोटास घुलनशील बैक्टीरिया,
1: जी
2: ये हमन पोषक तत्व के रूप में जैविक उर्वरक हमन उमल्ला उपलब्ध कराते हैं निशुल्क।
1: जी,
2: एकर अलावा जो है हमन जैविक, जैसे कीड़ा बीमारी लग जाते तो किसान मन के ही के हमन उमा रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंद नाशक कैसे का उपयोग करें उखर बदला में, तो हमन रासायनिक कीटनाशक के बदला में नीम तेल उमल्ला उपलब्ध कराथन। और बीमारी जैसे मत हो गई के ट्राइकोडर्माबीडी, बेसिलस थ्रोंजियंसिस, ये ला उपलब्ध कराथन। और यदि धान के फसल लगे हवे तना छेदक मत आए कही के, तना छेदक के रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप, ये अलग अलग प्रकार के जो कृषि वैज्ञानिक मन जल्ला अनुशंसा करते, तेन मल्ला हमन विभाग के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध कराथन।
1: बढ़िया जानकारी बताया सर जी। आओ आगु हमन जानबो के ये जोन जैविक खेती होते तेन हर कै बच्छर तक एकर योजना के लाभ हर मिलते, इहुल बताओ। प्रमाणीकरण बर का व्यवस्था होते तो इहुल बताओ सर।
2: जैविक खेती योजना एक ध किसान अगर चयन कर ली या उमन जुड़ जाते
1: जी,
2: तो उमन ला विभाग से 3 साल तक लगातार लाभ प्रदान करथन। 3 साल के काबर, वो 3 साल के प्रमाणीकरण के बफरिंग पीरियड होते। 3 साल यदि लगातार बढ़िया जैविक खेती वह शासन के जो गाइडलाइन ला पालन करके करही
1: जी,
2: तो ओखर प्रमाणित हो जाए, चौथैया साल वाला ग्रीन सर्टिफिकेट मिल जाते, ग्रीन प्रमाण पत्र, जिनला जैविक प्रमाण पत्र कहते।
1: अच्छा,
2: तो ये योजना 3 साल लगातार उमन ला लाभ मिली, 3 साल तक के शासन के द्वारा उमन

0: निशुल्क आदान सामग्री प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराथन। और प्रमाणीकरण बर भारत सरकार के जो सिस्टम है जैविक प्रमाणीकरण पोर्टल PGS पोर्टल एमा उखर प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से प्रमाणी करके सर्टिफिकेट दिए जाते।
1: जी बढ़िया जानकारी बताई से सर मन। आओ जानबो सर के प्रमाणीकरण के का व्यवस्था होते और किसान भाई मन में जुड़ा थे तो ओला कौन प्रकार से फायदा मिलते ओला बताओ सर।
0: प्रमाणीकरण पर किसान मन ला कोनो प्रकार के शुल्क नहीं लेवन। सरकार के जो सब्सिडी है वही में प्रमाणीकरण के व्यवस्था भी किए जा रही थी।
1: जी
0: और निःशुल्क मतलब प्रमाण पत्र भी जैविक प्रमाण पत्र मिल ही। एक ए योजना जो है 3 साल के आवा है तो 3 साल तक के उखर प्रमाणीकरण होते।
1: जी
0: 3 साल के बाद ओला मिल जाए। एकर अलावा जो है आप मतलब बताओ जैसे खरपतवार नियंत्रण है एम खरपतवार नियंत्रण भी पहला साल उमल्ला हमन निंदाई करे के यंत्र उपलब्ध कराथन। ओखर अलावा दूसरा साल तीसरा साल उमल्ला अगर उमल्ला वन नाशक न डाले गई के 1800 रुपया उमल्ला DBT के माध्यम से उखर खाता में अनुदान भुगतान करवाथन। और एक किसान ला केवल 1 एकड़ के लिए ही ये योजना में पात्रता रखते उमन।
1: अच्छा
0: अगर कोनो किसान के पास 2 एकड़ में तो 1 एकड़ में के लिए उमन ला निशुल्क सामग्री उपलब्ध हो है योजना के लाभ मिल ही। और ये योजना में जुड़े के लिए सबसे पहली बात ये योजना ला क्लस्टर में किए जाते। क्लस्टर में मतलब 20 एकड़ 25 एकड़ के क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर में बनकी अकेला कोई किसान एमा योजना के लाभ लेना चाहिए तो दिक्कत हवा एमा।
1: अच्छा
0: जी
1: बढ़िया जानकारी बताया हो सर। आओ जानबो हमन प्राकृतिक खेती का होते और ये हर किसान मन के बीच लोकप्रिय कहे हवा और लोकप्रिय बढ़िया हासिल करत हवा ये जिनिस ला बताओ सर।
0: प्राकृतिक खेती ये जो है भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के अंतर्गत अभी चलत हवा पिछले ये दूसरा साल आवा है।
1: अच्छा
0: ये प्राकृतिक खेती में का होते कि एमा बाहरी जो आदान सामग्री है जेल हमन बाजार ले खरीदथन एमा निर्भर नहीं रहे किसान के जो घर में उपयोग में खेत में हम करबो उपयोग तो हमार जो खेती के जो उपयोग करे वाला सामग्री हम खेते में तैयार करके उपयोग करी अपन बारी में तैयार करके उपयोग करी ये महत्वपूर्ण है जिनमें कम लागत बहुत अच्छा मृदा जो माटी है इसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे पर्यावरण अनुकूल रहे क्योंकि ये खेती अपनाए जाते तेखर कारण लगातार एखर लोकप्रियता बढ़ा था।
1: आओ जानबो सर हमन जौन प्राकृतिक कृषि आए वो तकनीक के उपयोग करके कौन कौन से हमन फसल ला बढ़िया ले किसान भाई मन ले सकते है और आमदनी ला अपन उत्पादन क्षमता ला बढ़ा सकते इहुल बताओ सर।
0: प्राकृतिक खेती में गेहूं बाजरा है अब बाजर और दाल फसल हवा है फल सब्जी है ये मतलब प्राकृतिक खेती के रूप में कर सकते एखर लिए मात्र यदि एक गाय हवा है देसी गाय जो है वो एक गाय से 10 एकड़ तक के खेती आराम से किया जा सकते प्राकृतिक खेती ला।
1: हाँ
0: हाँ एक गाय में निर्भरता से पूरा और प्राकृतिक खेती कर सकते।
1: बढ़िया जानकारी बताया सर। आओ जानबो हमन रासायनिक खेती ले प्राकृतिक खेती के आओ कैसे हमन ओला परिवर्तन ओला कर सकथन और बढ़िया फायदा ला ले सकथन इहुला बताओ सर।
0: रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती के ओर जाए बर धीरे धीरे जो रासायनिक सामग्री होला कम करना है।
1: अच्छा
0: ओखर बाद जो प्राकृतिक खेती में खेती करे के जो तकनीक है जैसे बीज अमृत है जीवामृत है घन अमृत है एला तैयार करके एखर बारे में तकनीकी प्रशिक्षण लेकर के सीख करके एमा और कृषि वैज्ञानिक है कृषि विशेषज्ञ है कृषि विज्ञान केंद्र या अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करके शुरुआत करे जा सकते। एमा सबसे पहली बात अपन मिट्टी के जो स्वास्थ्य है ओला पहली आकलन कर लो ओला नमूना ला चेक करवा लो कृषि विभाग से।
1: अच्छा
0: और एक एक गाय कम से कम देशी गाय।

0: घर में रहे, जेखर जो है गौमूत्र और गोबर का उपयोग करके इमा प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े जा सकते।
1: बढ़िया जानकारी दिए हो सर जी। आओ जानबो हमन प्राकृतिक खेती मा जौन परिवर्तित होते तो समय मा किसान मन ला कोई वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडी उपलब्ध मिलते कि नहीं, इहू ला बताओ सर।
0: भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत किसान भाई मन ला हर साल 2 साल ले 4,000 रुपया DBT के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराथन। ये निशुल्क रही थे ये योजना में जुड़े बर किसान मन ला। किसान भाई मन यदि ये योजना में जुड़ना चाहते तो नजदीकी अपने कृषि विभाग के जो ऑफिस है वहाँ संपर्क करें। और एमा जो है किसान मन के 50-50 हेक्टेयर के एक एक क्लस्टर बनते जिनमा 125 किसान, मतलब एक एकड़ एक किसान ला 125 किसान के एक ग्रुप बनी और वो ग्रुप ला फिर पंजीयन करके प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा है। एक अलावा किसान भाई मन ला कृषि वैज्ञानिक मन गांव में आके प्रशिक्षण दे है प्राकृतिक खेती करे के
1: जी।
0: हाँ, ये सुविधा उपलब्ध है। एक अलावा जो हमार कृषि सखी दीदी है जिन मन NRLA अंतर्गत भी जुड़े हुए प्रशिक्षण ले चुके हैं, वो कृषि सखी दीदी मन गांव में ही रह के किसान भाई मन ला प्रशिक्षण उपलब्ध कराते ताकि किसान गांव के बीच में दाई दीदी बहनी मन मतलब प्रशिक्षण देते आसानी से भी सीख सकते मन।
1: जी, आओ आगो जानना चाहबो के जो छोटे से किसान हवा है वो हर छोटे कन खेत में प्राकृतिक खेती ला कर सकते कि नहीं, इहू ला बताओ सर।
0: किसान भाई छोटे से खेत है उखड़ लिए और अच्छा है। प्राकृतिक खेती के लिए गाय के गोबर के एक मूल्यवान जो चीज है ओला उपयोग करके ही बनाना है। जो उम के जो उपयोग करने वाला घनामृत है, बीजामृत है, जीवामृत है
1: जी,
0: एला खेत में उपयोग करना है। दसपर्णी अर्क है जैसे जो जहरीला पौधा होते उखर कीटनाशक बनाना है, नीमास्त्र बनाना है, नीम से कीड़ा मकोड़ा मारे बर। ये छोटे जो किसान है छोटे कम मात्रा में उपयोग करते उखर लिए थे और आसान हवा यह
1: जी। बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आओ हमन जानबो कि जौन ये मिशन होते और परंपरागत कृषि विकास योजना होते एला किसान भाई मन ला बताओ सर जी।
0: परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान पर संचालित होने वाला योजना है
1: जी।
0: इसमें किसानों को जो पुरातन परंपरागत जैविक खेती करते आ रहे थे उसको फिर से पुनः जागरण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों को 3 चरण में प्रशिक्षण दिया जाता है
1: जी।
0: एक एक प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी और जो वहाँ के प्रगतिशील किसान है ये वहाँ प्रशिक्षित करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को जिले हमारे राज्य के अंदर जो अन्य जिले हैं वहाँ जहाँ बहुत अच्छा जैविक खेती कर रहे हैं ऐसे किसानों के खेतों का भ्रमण कराया जाता है
1: जी।
0: इसके बाद किसान भाई को राज्य जो अन्य राज्य हैं जहाँ बहुत अच्छे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती ये सब हो रहा है ऐसे किसानों के बीच, शासन के संस्थाओं के बीच, कृषि वैज्ञानिकों के बीच भ्रमण और प्रशिक्षण कराया जाता है जहाँ देखकर समझकर किसान भाई अपना परंपरागत खेती को कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आज के हमार जौन विषय रही राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में रही। और आप मन रहो श्री विनोद साहू जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो, उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर में। अतिक बढ़िया अपन अमूल्य समय रख के किसान भाई मनला हमला बढ़िया जानकारी बताए हो, एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सर जी।
0: जय जोहार भैया।
2: बहुत सुघर जानकारी बताई नहीं साहू जी मन और हमार किसान भाई बहनी मनला अभी एकर बहुतेज आवश्यकता है। कहे के जैविक खेती और

परंपरागत खेती प्राकृतिक खेती ए जम्मू ला अभी हमर किसान भाई मन जिन हाँ बढ़िया सावचेत हे उमन हाँ बढ़िया ढंग ले करत हे तो एमा कमी बेसी हे उला सर जी मन साहू सर जी मन हाँ बताइन हे और ए ढंग ले आप मन हाँ अपन खेत मा कृषि करिया तो बढ़िया उत्पादन ले सकत हा फसल ले सकत हा अब भुइयां मा घलक सुधार आ सकत हे जुन्ना समय मा जैसन हा खेती हुआ वैसन ही खेती हो है और खेती मा जेन सूक्ष्म जीवाणु रही से पहली और अब रसायन के डाले मा ओ मन हा नदाग रहिन हे तो अब धीरे धीरे संगी हुआ आप मन हा ऐसने ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती परंपरागत खेती करिया तब ए जम्मो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु है जेन हाँ भुइया के माटी ला भुरभुरा करते जैसे केकरा है गेंगरुआ है केचुआ है ये मन हाँ बढ़िया संचर ही ज्यादा ले ज्यादा मात्रा में बाढ़ी और भुइया के स्वास्थ्य ला बढ़िया ठीक राखी तो आप मन हाँ बहुत सुंदर अभी ये खेत ये जानकारी ला सुने हा और सुन के गुनिया घलक और आज के विषय रही से राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर के जानकारी देते रहे श्री विनोद साहू जी मन और अब कार्यक्रम में आगु बढ़बो संगी हुआ तो अभी खेती किसानी के बात करे हन तो काहे नहीं धरती दाई के है ना माटी के सुघर महिमा के बखान लाल सुघर लोकगीत में सुनबो जिला स्वर देहे है नरेंद्र यादव पिंकी मरावी मन तावा सुनने सुघर लोकगीत ला।

ये सुघर गीत लगात रहिन है नरेंद्र यादव पिंकी मरावी मन। अब संगी हुआ मौसम के जानकारी दे देथन। आज के अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रही से अब कम ले कम न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कोहो कोहो देखे जाते बादल छाए है ता हल्का वर्षा होए के अनुमान हवा। तो अपन कुछ धरे हो अंगना मत धर सखल ले रही है अनुमान है। अब बात करबो संगी हुआ मंडी की। तो मंडी में गेहूँ के भाव रही से तिफरा मंडी में 2488 ले 2600 रुपया कुंटल। मक्का के है 1800 ले 1900 और धान के है 2800 ले 3000 रुपया कुंटल। फूलगोभी के 800 ले 1210 रुपया। शिमला मिर्चा के 1400 ले 1800 रुपया और मटर के 1400 ले 2010 रुपया और भांटा के 800 ले 1010। पत्ता गोभी 600 ले 810 और गाजर हवा 900 ले 1100 रुपया। और अब कृषि सलाह में संगी हुआ बरसात के मौसम में तो खरीफ फसल में धान के रोपा लगावा था मन तो ओला उपचारित करके खचित लगावा। उपचारित करिया तो कोनो प्रकार के नुकसान नहीं हुए और फसल है बढ़िया भोगा है और बढ़िया बाढ़ी। फलदार वृक्ष पेड़ पौधा लगाए के समय है आमा लिमाऊ पपीता सीताफल बेलफर बोईरफर और बिही के पेड़ आप मन हा संतरा मौसम्बी एक हर लगा सकत हा। अभी के बेरा में बरसात के समय में नमी ज़्यादा रथे तो संक्रमण के घलक बाढ़े रथे संक्रमण हा नमी के मारे। तो अपन खान पान में चेत करिया ताज़ा और सफा भोजन करना बढ़िया रही उचित रही। गाय भैंस के अपन मवेशी मन के पालतू पशु मन के घलक चेत राखा। उमन ल खुरहा चपका के टीका खचित रूप में लगवावा। अब संगी हुआ बेरा होगी घर जाए के तब देवा अपन फुलवा बहनी लबेदा जम्मो कार्यक्रम।

सुनैया भाई बहनी मल्ला फुलवा बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। किसानवाड़ी के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

किसान वाणी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। समय है श्रोताओं सुगम संगीत का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फॉरेन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 0775226592 3100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज हम सुन रहे हैं हंसराज हंस के स्वर में चंद गीत।

हंसराज हंस के स्वर में ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें कल सुनिएगा, वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा। जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफीक की बातचीत आप सुनेंगे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

नमस्कार श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के अंक में स्वागत आप सभी का। मीनाक्षी है आज आपके साथ।

श्रोताओं, आज यानी 11 जुलाई के दिन हम जन्मदिन मना रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता का जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिलों पर राज किया। 80 के दशक के लोकप्रिय भारतीय अभिनेता, दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से अपने कैरियर की शानदार शुरुआत की थी।

साल 1981 की फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखा राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने। 11 जुलाई 1960 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे कुमार गौरव फिल्मी परिवार से होने के बावजूद सादगी, मुस्कान और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पिता के फिल्मी बैकग्राउंड के कारण उनकी रुचि भी अभिनय में थी और साल 1981 में उनकी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी, ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई। युवाओं के बीच कुमार गौरव रातों रात लोकप्रिय हो गए। उनकी सरल छवि और सहज अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और कुमार गौरव लाखों दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म का गीत, संगीत, फिल्माए गए दृश्य, कहानी, सब कुछ अविस्मरणीय बन गया।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें कल सुनिएगा, वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा। जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफीक की बातचीत इसमें आप सुनेंगे। रिकॉर्डिंग और संपादन अद्वैत भारत।

श्रोताओं, रजनीगंधा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और आज हम बातें कर रहे हैं कुमार गौरव की। श्रोताओं, लव स्टोरी के बाद तेरी कसम और स्टार जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन लव स्टोरी फिल्म जैसी सफलता उन्हें दोबारा नहीं मिली। कैरियर के ढलान के समय पिता राजेंद्र कुमार ने 1986 में बनाई फिल्म नाम, ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट रही। इसके बाद आई उनकी फिल्में गूंज, फूल। इन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भले ही उनका फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनकी पहली फिल्म की सफलता आज भी बॉलीवुड के इतिहास में याद की जाती है। संजय दत्त के साथ उनकी फिल्म नाम सुपरहिट रही थी। इस फिल्म को कोई कैसे भूल सकता है, और इस फिल्म का नामकरण भी कुमार गौरव ने ही किया था।

ये गीत सुपरहिट रहा था और इस गीत को हम आज भी याद करते हैं। श्रोताओं, कुमार गौरव ने हमें ये दिखाया कि सफलता केवल प्रसिद्धि नहीं होती बल्कि विनम्रता और सादगी भी इंसान को महान बनाती है। इनकी फिल्मों के गीत आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। उन्हीं गीतों में एक ये गीत था उनकी फिल्म नाम का। कुमार गौरव की मासूम अदाकारी और शांत व्यक्तित्व उन्हें अपने समय के सबसे अलग अभिनेताओं में शामिल करता है। हर कलाकार का सफ़र एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो कलाकार अपनी पहली प्रस्तुति से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं उनका नाम हमेशा हमेशा याद रखा जाता है। कुमार गौरव उन्हीं कलाकारों में से एक हैं।

धीरे धीरे कुमार गौरव बॉलीवुड से गायब होते चले गए। उनकी आखिरी फिल्म 2002 की फिल्म कांटे थी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। आज कुमार गौरव एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनका असली नाम था मनोज कुमार तुली। मनोज कुमार एक मशहूर भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं, हम सभी जानते हैं। वो एक सफल हीरो थे और इसीलिए मनोज कुमार तुली का नाम बदल कर रखा गया कुमार गौरव। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अपने शुरुआती दौर में कुमार गौरव ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। 1985 की फिल्म जन्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का नामांकन भी मिला था। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखी जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं।

रजनीगंधा से आज बस यहीं विदा दीजिए, मीनाक्षी को नमस्कार। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचारों के लिए अब जोड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी

0: हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436287930849155237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग

0: और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें, और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: ये नशीली हवा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहब की और धुन सलील चौधरी की है।
3: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार में आज एक ऐसी फनकार जिन्होंने अपनी गायकी से सबके दिलों को लुभाया।
1: अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का।
0: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: तो अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: तो चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है सलमा और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नगमात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आगोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में। तेरे परचम सारे तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं, देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारी।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और संवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूबकर निकलना है और वहाँ से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह

खिल उठना है नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखाई देती है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहां उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदे जमी पर गिर के समा जाती हैं उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात थी

लिखा, कई कई बार लिखा, पानी पर लिखा, नदी पर लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है, मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दिवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजानों से भर

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

0: खो गए जी दिल खो गया है कुछ हो गया है हमको। हम खो गए जी दिल खो गया है कुछ हो गया है हमको।
1: किस्मत खुली है मंजिल।

0: विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचारों के लिए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन

0: के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by